0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: Bengal Habib. Rishta Bharose Ka.
2: Ye khat mein rusul.
3: Kya dekh rahe ho?
4: Ye sab to tum bahar se rakam vasool karne par bhi jeet sakte ho.
3: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अल हबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 578 शहरों में बैंक अल हबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं तो भाई साहब क्या समझे
1: बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
5: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहन एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधिक राबते जे लाइ 0385-569-0359
6: شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں ہلکے کپڑے پہنے سر ڈھانپ کر رکھیں دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں زیادہ پانی پیئیں اور محفوظ رہیں یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ٹی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے

पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो ने वजन जो न वधण उन्हनि

0: 2196-851।
1: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
2: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: देख रहे हो,
1: बाहर से भेजे गए रकम बैंक अल हबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अल हबीब के 1320 से ज्यादा ग्लोबल हैं। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक रूल करें और हर महीने लकी जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे।
3: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजे गए रकम बैंक अल हबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमदार इनाम ग्रैंड प्राइज स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस।
3: इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अल हबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्ट। आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
1: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल।
2: रिश्ता
0: आयरन स्टोर हालानी टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पर दरवाजा सिल्वर नई रंग वस्तिया
0: चू मेहरान आयरन स्टोर नज बंप नेशनल हाईवे
4: अपने लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छाकजे।
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई?
5: न अदा
0: यार, आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
5: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
6: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
7: 03013992836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
3: पर असांजो मुआहिदो ओबामा जे मुआहिदे खां बिल्कुल उबतड़ हूंदो. असांजे मुआहिदे खे अञा ताईं कंहिं ॾिठो नाहे, न ई कंहिंखे ख़बर आहे उन मुआहिदे में कहिड़ा कहिड़ा नुक़्ता आहिनि. नाकाम माण्हुनि जे ॻाल्हियुनि ते ध्यानु न ॾिनो वञे जेके मुआहिदे जा तफ़सील ॼाणण खां सवाइ तनक़ीद कनि पिया. मुकागवारनि खे ईरान मसलो पहिरियों ई हल करे छॾणु घुर्जे. ईरान डील बाबति सुठी ख़बर ईंदी, ऐं ख़राब डील न कंदो आहियां.

कोयटा के शहर चमन में रेलवे फाटक पे धमाके में शहीदन जो अंग शहीदन में एफ सी जो जवान भी शामिल वरे वजीर सरफराज बुगटी के मावन शाहिदन की तस्दीक शाहिदन दहशतगर्दन मासूम शहर के निशान बनाया वजीर आजम ए सदर पारा चमन फाटक धमाके की मजम्मत सदर आसिफ अली जरदारी दहशतगर्द उन सरप्रस्त पाकिस्तान के नुकसान पहुंचा चाहन था दहशतगर्द पाकिस्तान के अमन लाइ कोशिश के भी नुकसान रसण चाहन था दुनिया दहशतगर्दन उन सरप्रस्तन असल चेहरो डिसे वजीर आजम धमाके सबब मासूम जानू विंजाइजी व्यू दहशतगर्दन जो अड़ी बुजलानी कार्रवाई पाकिस्तानी अवाम जो अजम कमजोर न थी कन कर सकन दहशतगर्दन के पहाड़ का पटण वाले अजम से कायम आयू पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भारतीय सरप्रस्ती में सरगर्म नेटवर्क और पाकिस्तान के दुश्मन जो मुल्क के गैर मुस्तकम करने वाली साजिशों नाकाम थी पूरी कौम दहशतगर्दी पाकिस्तान के अमन खिलाफ छिंदड़ साजिशों के खिलाफ एक है।

0: हमारे पाकिस्तान रेंजर्स एसआईयू पुलिस फतेह कुरन खिलाफ पीआईबी कॉलोनी में कार्रवाई फायरिंग की रेवट बाद फतेह कुर जख्मी हालत में गिरफ्तार रेंजर्स तर्जुमान चवण है फतेह कुरन खिलाफ अधिक कार्रवाई ला इजाफे नफरी तलब कई गई है।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राबते जे लाइ 0385-569-0300-33-8556-9।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहराबपुर राबते जे लाइ 0320-18-00-003।
4: शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई वने थी त सुबुह 11 वगे खां शाम 4 वगे ताईं खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वञो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो ऐं उन दौरान शदीद जिस्मानी कम खां पासो करियो। बारन बुजुर्गन ऐं बीमार माण्हुनि जो खास ख्याल रखो। वधीक पाणी पीओ ऐं महफ़ूज़ रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध PDMA कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक ऐं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जे तावन सां पेश कयो वियो।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
5: न अदा।
7: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेहराबपुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेहराबपुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
5: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
7: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
6: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
8: 0301-399-2836
7: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1558-724।
9: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94
3: आशिक होंडा शोरूम मेहराबपुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहराबपुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307 3592120

0: इलेक्ट्रिक ऐं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जे तावन सां पेश कयो वियो।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हाँ अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836।
3: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1565-724।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: आप सुन रहे थे
1: खबर आहे त उन मुआहदे में कहिड़ा कहिड़ा नुक़्ता आहिनि नाकाम माण्हुनि जी ॻाल्हियुनि ते ध्यानु न ॾिनो वञे जेके मुआहदे जा तफ़सील ॾियण खां सवाइ तनक़ीद कनि पिया मूंखां अॻु वारनि खे ईरान मसइलो पहिरियों ई हल करे रखी छॾणु घुर्जे हा ईरान डील तहत सुठी ख़बर ईंदी ख़राब डील न कंदो आहियां दुनिया खे यकीन ॾियारण लाइ तयार आहियूं त ईरान एटमी हथियार हासिल करण जो ख़्वाहिशमंद नाहे तेहरान सफारतकारी ऐं इलाक़ाई सिखाम लाइ पुरज़म आहे एशिया में जंग ऐं अदम तहफ़ुज़ जो असल सबबु ईरान न पर इसराइल आहे ईरान जे सदर मसूद पज़ेशियान चवाया ईरानी मुज़ाकरातकार कॾहिं बि मुल्क जी इज़त ऐं वक़ार ते सौदेबाज़ी न कंदा वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चीनी वापारनि खे पाकिस्तान में सीड़पकारी जी दावत वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो पाक चीन दोस्ती खे 75 साल पूरा थियण जी ख़ुशीअ में चीन जे शहर हांगज़ू में बिज़नेस टू बिज़नेस फोरम जे ख़िताब वज़ीर आज़म चयो त कराची में 6,000 एकड़नि ते वधल आलमी मयार जो स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन ठाहियो आहे पाकिस्तान जल्द खिते में तरक़ी जे सफ़र में चीन जे बराबर हूंदो असांखे कर्ज़ न महारत खपे पाकिस्तान ऐं चीन जे कंपनियुनि विच में MOUs ते सहियूं कयूं वयूं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो चीन में अली बाबा हेडक्वार्टर जो दौरो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जोसाई वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जी आजियां कई एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जोसाई चयो त खिते में अमुन जी कोशिशुनि लाइ पाकिस्तान जो किरदारु वाखाण जोॻो आहे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो त पाक चीन दोस्ती जो मिसाल दुनिया में किथे बि नथो मिले अली बाबा दुनिया जे वॾनि इदारनि मां हिकु आहे

अली ने जवाब खंजर जा वार कर एक जनो कतल जवाबदार घर बारा बीठल 47 साल लुत्फ अली के खंजरन जा वार कर कतल कयो लाश अस्पताल मुंतकल पुलिस मौजब वाकियो जाती दुश्मनी लगी रहा है मामले की जांच शुरू कर छी है। भान सैदाबाद में आबादगारन जो पानी कोट खिलाफ धरणो भान माइनर लनी शाह की पुछली के आबादगारन पीर शाह पौड़ी वट धरणो हयो आबादगारन चौथा पासी खाते जा मलदार पानी विकरो कन पाया पानी फराम करे परेशानी खत्म कई वने

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनिया जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई, 0307-3592120।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
4: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दनि जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद

0: It's 12 p.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
3: हमेशा लाए अमन बहाल किए चीनी वजीर आजम चयो तो पाकिस्तान इलाकई अमन लाए हाकारी किरदार अदा कया है वजीर आजम शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल आसम मुनीर बगड़ हो अमरीकी सदर ट्रंप चवा है तयान से असो मुहिदो अजा मुकम्मल तौर से तय ना थो पर असो मुहिदो ओबामा के मुहिदे का बिल्कुल उबतड़ होंद असाजे मुहिदे के अजा तक कें डो ना नई कें खबर है उन मुहिदे में कड़ा कड़ा नुकता हैं नाकाम मानों की गाल ध्यान न डो वे जे मुहिदे या तफसील जान का सिवाय तनकीद कर रहा है मुखा अगवा के ईरान मसलो पे ही हल कर छड़न घुर्जे हाँ ईरान डील बाबत सुठी खबर इंदी और खराब डील न कन्द आया ईरान डील ते कम हले पो मुहिदे बाबत उम्मीद हुई तो रात तक का खबर मिले पर थी सके तो अज मिली वे अमरीकी परदे वजीर मार्को रोबियो चवा नई दिल्ली में रवानगी का मीडिया से गलते चो तो इन मामले में अगकथियों न करण घुर्जन अमरीका ईरान से या को मुहिदो कंदो या के बे तरीके से मुंह डींद आमना हुरमज खुलल रखन या एटमी हथियार बाबत संजीदा गाल गौर हेठा चौथी जंग लाइ असाजे आंगुर ट्रिगर ते आहे ईरानी हथियार जो सब गालियों जरिए ईरानी कौम जकन ला कोशिशों जारी आहिन ईरानी सुप्रीम लीडर जे मशीर मौसिन रज़ाई तकरीब के खिताब कंदे चयो तो गालियों आखिरी मरेले में दाखिल थी चुकियो आहिन उम्मीद आहे तो 47 वरन जी जदोजहद ईरान जे 50 वरन ताईं इस्तेकाम ऐं सलामत जी ज़मानत वठंदी।

केबी में सवाबी सवार मोटरवे ते वेन ऐं कोच में टकर 11 ॼणा फौत मोटरवे पुलिस मौजूद पे इस्माइला वेझो बस हादसे सबब 11 ॼणा फौत ऐं 7 ॼणा जख़्मी थी पिया मोटरवे पुलिस चवण आहे त हादसो बस ड्राइवर जी गफ़लत सबब पेश आयो आहे

बख्शापुर भरसा डोमकी जकरानी धुरन में झेड़ो एक जणो कतल जमीन के मालिकी तां झेड़े के नतीजे में मोटण डोमकी माधी वो मकसूल जो ला जरूरी कार्रवाई अस्पताल मुंतकिल।

0: बांसदाबाद में आबाद करण जो पानी खोट खिलाफ धरणो भान बैनर लुडी शाख की पुसी जा आबाद करण तीर शाख मोरीवट धरणो हयो। आबाद करण जो तापाशी खाते जा अमलदार पानी विकरो कर रहा है, पानी फराम करे परेशानी खत्म कई वने। आयर की स्कूल में छड़ी अग प्रसार नमूने फौत थियल शागिर्द के वारसन जो स्कूल आड़ो एहतजाज। वारसन ए सिविल सोसाइटी के अखबार चवण आए तो निजी स्कूल में शागिर्द साहिल शेख प्रसार नमूने फौत थी पो है, स्कूल इंतजामिया मामला लिखा रही है।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड महरापुर राबते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुन जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़न जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0308-00-3859।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
3: न अदा।
0: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हाँ अदा, कारोबारी इश्तेहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं सोम

0: पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: बैंकल हबीब रिश्ता भरोसे का
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौक सीमेंट रेती क्रेश रंग वगैरह सिल्वर जा चौक सीमेंट रेती क्रेश रंग वगैरह

0: ॾिठो। मूं पंहिंजो दुकानु खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाबु वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हा दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
1: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
0: ऑफिस जी मीरापुर FM 94 नर्थ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मीरापुर।
2: राबते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
3: 03013992836।
4: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

ईरान अमरीका सां जंग जे खात्मे लाइ शुरूआती फ्रेमवर्क ते इतफ़ाक थियण जी तस्दीक करे छॾी। ईरानी परॾेही वज़ारत जे दर्जबान इस्माइल बाकाई चयो आहे त जंग जे खात्मे लाइ अमरीका सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। शुरूआती एमओयूज़ ते पहुचण जो मक़सद ईरान ऐं अमरीका में मुआहिदे जे वेझो पहुचण नाहे। फ़िलहाल पाकिस्तान वफ़द मोकिलण जो इरादो नाहे। अपना हुरमत वारो मामिलो साहिली मुल्कनि जो आहे। फ्रेमवर्क में हुरमत बाबति घणो ज़िक्र नाहे। एटमी मामले ते बि ॻाल्हियूं न पिया कयूं।

ईरान सां मुआहिदो मुकमल तौर ते तय नाहे थियो। असांजो मुआहिदो ओबामा वारे मुआहिदे खां उबतड़ हूंदो। असांजे मुआहिदे खे अञा कंहिं ॾिठो ई नाहे, न ई कंहिंखे नुक़्तनि जी ख़बर आहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त नाकाम माण्हुनि जे ॻाल्हियुनि ते ध्यानु न ॾिनो वञे, ख़राब डील नाहियां कंदो। ईरान सां डील बाबति सुठी ख़बर ईंदी। ईरानी परॾेही वज़ीर मार्को रुबियो चयो त ईरान सां डील ते कमु हले पियो। मुआहिदे बाबति उमीद हुई त राति ताईं का ख़बर मिले हा, पर थी सघे थो अॼु मिली वञे।

पाकिस्तान में सदाई पाकिस्तान जो साथ दिनों पाकिस्तान चीन सामरी सहकार खेती देने तैयार है। अमुन के क्याम बाबत काफी अगबराई थी है। दुनिया नाजुक दौर में गुजरे पई। दुआ है हमेशा लाए अमुन बहाल थिए। चीनी वजीर आजम तो पाकिस्तान इलाकई अमुन लाए फाकारी किरदार अदा कर छी। ईरानी परडी वजारत के जज्बान इस्माइल बाकाई चवा है तो जंग के खात्मे लाए अमरीका से गाल जारी है। शुरुआती एमओयूज से पहुंचने जो मकसद ईरान ए अमरीका में मुहिदे के वेझो पहुंचण ना है। फिलहाल पाकिस्तान वफद मोकलण जो इरादो ना है। अपने हुरमत वारो मामलो साहिली मुल्कन जो है। फ्रेमवर्क में हुरमत बाबत घणो जिक्र ना है। एटमी मामले से भी गाल न पाया करूं।

सिंध असेंबली में अपोजिशन जो कराची में पानी खोड़ खिलाफ़ एहतजाज। अपोजिशन मेंबर्स स्पीकर डाइस जो घेराव करे एजेंडा जो कापियूं फाड़े छद। अपोजिशन एमपीएस और सूबाई वजीर विच में सख्त जुमलन की डे वठ। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी पानी जो मसलो अहम है, पैरियां उन गालो मुख्य गलण की इजाजत न मिली तो कंखे भी गलण न डींदुस। घरू वजीर ज़ियाल अंजार पानी की सियासत न कर मामले वाली रिथा आणियों पानी के मसले से ईंदी।

केपी में सवा भी सवात मोटरवे ते वेन है कोच में टक्कर यारह जना फौत मोटरवे पुलिस मौजूद इस्माइला वे जो हादसे सवा यारह जना फौत थी गया सत जना जख्मी थी गया।

0: मुख़्तलिफ़ ऐं कालम में मौजूदु आहिनि। फ़ौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौक़ीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320018-00003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
3: हा दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
2: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
3: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94
3: मोरियो मोबाइल नंबर 03।

Assalamualaikum. पुरकुल दुआओं के संबंध है शहादों की बारिश उलासवल खजानों के साथ दुआ ही पल से पल तक आज से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात तक नीचे जाकर जमी से आसमान तक जिंदगी से मौत चांद से दर्द तक से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे सो आमीन या रब्बुल आलमीन। जनाब आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ ही जनाब यहाँ पर सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मादली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो आप लोगों तक पहुंचा जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से। तो अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर आप अपनी खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल जी आपको बताएंगे कि किस तरीके कार को फॉलो करके आप ना सिर्फ अपनी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं बल्कि आप हमेशा के लिए हसीन और खूबसूरत बन सकते हैं और इसी के साथ साथ आपकी जो खूबसूरती होगी वो भी हमेशा प्रोटेक्ट रहेगी। तो अगर आप अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना चाहते हैं तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। क्या तरीके कार होंगे सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन कहते ना कि इतनी जल्दी क्या है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है। तो बिल्कुल अपना तारीफ करवाते हैं। सो लिसनर्स फॉर प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान। नाम तो सुनाई होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा आप लोगों के साथ साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं, अपने होने का एहसास दिलाएंगे और साथ ही साथ अपने हाल चाल बताते जाएंगे। सो डियर लिसनर्स अंत के हालत कैसे ही आपकी हालत है, उम्मीद है शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे, कर रहे थे ना। बिल्कुल ही। तो आपके इंतजार की घड़ियों को खत्म करते हुए यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली हैं। आप जानते ना कि अगर हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है। ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक हम आपके साथ मौजूद रहने वाले हैं और इसी उम्मीद के साथ कि आप भी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे सतह से मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रहे थे। ऐसी बहुत सारी आंटियां अम्मियाएं खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान। सुबह अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सिद्रा आली बॉस आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगाज़ ही प्रोग्राम कर लेते हैं और आगाज़ ही प्रोग्राम किया जाएगा एक बहुत ही प्यारे से कलाम के साथ। तो बहुत ही प्यारे से कलाम सुनते हैं, उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में हम क्या करेंगे। तो प्रोग्राम है नाउ व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरी पूरे 3 बजे।

0: ओके जनाब, क्या बात है. और साथ साथ यहाँ पर प्रोग्राम सुन रही है व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तावन से. आपकी सिद्रा आपके साथ मौजूद है और यहाँ पर जनाब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं. आपको बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए टॉपिक क्या होने वाला है. तो टॉपिक देखा जाए तो आज गर्मी को देखकर, वैसे आज भी मेरा दिल कर रहा है कि आप लोगों से गर्मी का एक सवाल पूछा जाए. गर्मी जब भी जैसे जैसे बढ़ती जा रही हूँ तो भैया मैं ऐसा लग रहा है कि भाई अलग रहा है करीब जो है ना सांप चालो करे वेंदासी चौथा गर्मी ऐसा का कुछ बर्दाश्त ही ना आई थी. और आजकल लाड़काना में तो भाई वैसे आप ही बताइएगा आपके यहाँ टेम्परेचर क्या चल रहा है. लाड़काना में तो भाई शदीद वाली गर्मी पड़ रही है. और इसी के साथ साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल ये पूछना है कि आप मुझे बताएं कि गर्मियों में आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा डेंजरस जो है वो कौन से काम है जो खवातीन किचन में बैठ कर काम करती हैं, खाना बनाती हैं, या फिर वो लोग जो ट्रैफिक में फंस जाते हैं. इन दोनों सूरतों में आपको क्या लगता है कि कौन सा जो कौन सी जगह है वो ज्यादा डेंजरस है, ज्यादा खतरनाक है, वो खवातीन जो किचन में खाना बनाती हैं या वो लोग जो ट्रैफिक में फंस जाते हैं. देखा जाए तो दोनों चीजें अगर आप सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा कि भाई दोनों जो चीजें ना वो वाकई ये जगह जो ना बड़ी खतरनाक होती है. लेकिन आज आप मुझे बताएंगे आपको क्या लगता है ज्यादा आपका वोट किसकी तरफ जाने वाला है. और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8821 पर. अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब. और जी लाड़काना FM 88.8 अगर आप लिखते हैं तो आपको इजीली हमारा पेज मिल जाता है. पेज को आप फॉलो कर लीजिए, उसके बाद आप जैसे ही आप हमारे पेज पर आते हैं तो आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिलती है जिसका नाम है व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो. लाइव पोस्ट होगी, लाइव पोस्ट को आपने लाइक करना है, कॉमेंट करना है और शेयर कर देना है. तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर करते जाइए और जल्दी जल्दी से अपने होने का एहसास लाते जाइए ताकि पता चले कि आप हमारे साथ मौजूद हैं और हाँ जी एंजॉय करने के लिए, मजे करने के लिए रेडी रेडी हैं. ओके, सो आज आप मुझे बता रहे हैं कि आपको क्या लगता है ज्यादा कौन सी जगह डेंजरस है, वो खवातीन जो कि किचन में खाना बनाती हैं, वो जगह यानी कि अगर खवातीन हो या मर्द हो किचन में खाना जो भी लोग बनाते हैं उनको पता होता है कि भाई किचन में खड़े होकर खाना बनाना कितना एक मुश्किल काम होता है, खास करके दोपहर के टाइम में. और उन लोगों को भी पता होता है जो लोग दोपहर के टाइम में ट्रैफिक में फंस जाते हैं. तो ये दोनों जगह जो है, ये दोनों सूरत हाल जो है, आप क्या लगता है आपको कि कौन सी जो जगह है वो ज्यादा खतरनाक है, कौन सी जगह ज्यादा डेंजरस है. और इसी के साथ आप हमारे साथ मौजूद हैं जी, ज्वाइन करते जा रहे हैं. लेकिन आप लोगों को ये चीज भी पता होनी चाहिए कि ये प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आप लोगों को बताया जाए तो ये चीज गलत नहीं होगी, क्योंकि भाई प्रोग्राम आप लोगों तक व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से पहुंचाया जा रहा है जिसमें आप लोगों को बहुत ही सारे मजे मजे के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, जैसे कि व्हाइट एज की ब्यूटी क्रीम है, व्हाइट एज की लवली क्रीम है जो कि फेयरनेस क्रीम है. व्हाइट एज की ब्यूटी क्रीम आप रात के टाइम लगाते हैं तो व्हाइट एज की लवली क्रीम आप दिन के टाइम लगाते हैं. और इसके अलावा व्हाइट एज का आपको फेस वॉश मिल रहा है जो कि विटामिन सी के साथ तैयारशुदा है. उसके साथ व्हाइट एज का आपको साबुन भी मिल रहा है, जो लोग साबुन लगाते हैं वो साबुन लगाएंगे, जो लोग फेस वॉश लगाते हैं वो फेस वॉश लगाएंगे. और उसके अलावा डॉक्टर पिंपल का एंटी एक्नी क्लियर ट्यूब मिल रहा है जो कि एंटी एक्नी ट्यूब है डॉक्टर पिंपल नाम से, वो भी व्हाइट एज वालों का है. और उसके अलावा आप लोगों के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, और व्हाइट एज के हेयर रिमूवल लोशन भी है और व्हाइट एज का लोशन भी है. ये सारे प्रोडक्ट्स जो कि आप इजीली कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं. नहीं मिल रहे आपके एरिया में तो आप डायल कर रहे हैं 03-1579-0595 के नंबर आप डायल कीजिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाइए, और होने भी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है. तो आप हमारे साथ साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम में 3 बजे तक आप हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं. और ये आदिल हुसैन हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं खुश हैं सिद्रा जी जी. तमाम बधायो कहते हैं कि ना दुनिया में सिर्फ नाकाम माण्हू ही अवां जा मुखालिफ हूंदा, बाकी कामयाब माण्हुनि वटि कंहिंजा ऐब ॻण जेतिरो टाइम ई नाहे हूंदो. बिल्कुल इहा तव्हां सही ॻाल्हि कई आहे, जेके वांदा हूंदा आहिनि उहे इहे कम कंदा आहिनि. ऐं तव्हां लिंक शेयर कई आहे, मां कोशिश कंदमि तव्हांजो गानो हलाईंदासीं. आशिक अली जलबाणी भाई हमारे साथ मौजूद है, बहुत ही प्यारा आपने दिलियों वाला मैसेज कर दिया है, बहुत शुक्रिया. और हिदायतुल्ला अहमदानी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं ठीक है, आप बताए हिदायतुल्ला कैसे हैं. इमरान खान रुख हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम. चाचा खालिद कहते हैं अच्छा अच्छा चलें, कहते हैं कि जब तुम आती हो सब कुछ, सब गिले शिकवे भूल कर तुम्हारे साथ शामिल हो जाते हैं, सब कुछ भूल कर. क्या मतलब, आपको मुझसे भी गिले शिकवे हैं? इतनी प्यारी कुड़ी से कोई कैसे गिले शिकवे कर सकता है, ये बात मुझे समझ नहीं आती. वेल आप हमारे साथ मौजूद हैं, बिल्कुल आपके मैसेजेस पढ़ेंगे और पढ़ते जाएंगे। यहाँ पर टाइम की जाने मेरी नजर पड़ी तो टाइम हुआ जाता है, जरा हम जो है ना वो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानब जाते हैं और शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं और आपका हमारे साथ पूरी पूरी 3 बजे तक है। तो सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। आप सुन रहे हैं जनाब व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स। एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते जाइए, खूबसूरत होते जाइए।
1: GA FM 88
2: सिंध की आवाज।
3: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे, खेल महा से और बेजान पन, अब सबको कहें अलविदा बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम। चेहरे की जिल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सावली रंगत अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाए साफ, निखरी और गोरी रंगत। लेकिन याद रखें, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें ताकि असर हो दुगना। आज ही अपने करीबी कॉस्मेटिक, जनरल एंड मेडिकल स्टोर से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए अभी
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड में रापर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

ओके जनाब, सब वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास. आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क. हमारे साथ ही जनाब सखर, मोरो, मीरपुर खास, मटियारी, सकरन, मेहरापुर, मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड द स्किन ब्यूटी शो. स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से. तो यहाँ पर जरा आप लोगों को बताया जाता है प्रोडक्ट्स के बारे में, और बताया इसलिए जाता है ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि जब आप मार्केट जाएं और परचेज करें व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, तो आप लोगों को ये चीज जहनों में हो कि आप परचेज क्यों कर रहे हैं. अक्सर तौर पर देखा जाता है कि आप लोगों को खूबसूरती के मामले में ना जो भी चीज बताई जाती है बस आप लगा लेते हैं. तो अगर आपको ये चीज बताई जाए कि भाई आपके चेहरे पर दाने हैं, फलां वाला प्रोडक्ट लगा लो और फलां वाली क्रीम लगा लो, मैंने लगाई थी मुझे फर्क मिल गया है, अगर इस तरह का कोई काम करता है ना, इस तरह अगर कोई आपसे बोलता है कि आपकी स्किन पे दाने निकले या ये चीज है, ये मसला है, तो आप ये वाला प्रोडक्ट लगा ले, मैंने लगाया था मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है. तो ये चीज भी आप याद रखा करें कि हर किसी की स्किन जो होती है ना वो मुख्तलिफ होती है, हर किसी का स्किन टोन अलग अलग होता है. तो अगर उसको उस प्रोडक्ट ने फायदा दिया तो जाहिर सी बात नहीं कि वो भाई आपको भी फायदा दे. तो अगर आप वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए होते हैं, तो वो आप सारे लोगों की स्किन के ऊपर जो है ना वो रिजल्ट आते हैं. लेकिन ऐसा नहीं कि जो भी प्रोडक्ट आपको कोई भी बता दे कि भाई मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है, आप लगा ले और आप लगाने लग जाते हैं, बाद में आपके चेहरे पर जो मसाइल है वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं. तो देखा जाए तो थोड़ी सी आप भी ना अपनी अकल इस्तेमाल कर लिया करें और थोड़ा सा जो है ना वो इन चीजों के ऊपर ध्यान दिया करें कि आपने जो चीजें अप्लाई करनी है वो एक तो ये बात कि वो ऑल स्किन टाइप के लिए, दूसरी बात ये कि वो नेचुरल अज्जा से तैयारशुदा हो, जिनके अंदर ऐसी चीजें ऐड की गई हो, ऐसी चीजें शामिल की गई हो जो कि आप लोगों की स्किन के लिए वाकई फायदेमंद साबित हो. तो अगर आप लोगों को कोई भी कुछ भी बताए तो बस ऐसे नहीं लगा लिया करें, थोड़ी सी आप जो है ना वो खुद भी आप देखा करें, समझा करें कि जो चीज आप लगा रहे हैं उसमें आपको वाकई फायदा मिलने वाला है. और अगर मैं आपको बता रही हूँ व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स की अगर बात करूँ तो ये वाकई नेचुरल अज़ा से तैयारशुदा होने वाले प्रोडक्ट्स हैं और ये ऑल स्किन टाइप के लिए है. अगर आपकी स्किन किसी भी टोन की है तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं. और उसके अलावा एवोकाडो शामिल है, व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम है, मिल्क में भी है और साथ साथ एलोवेरा भी है. ये तीनों चीजें हैं जो कि व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम के अंदर मौजूद है. तो अगर आप भी नेचुरल अज़ा से तैयारशुदा होने वाले प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप आसानी लगा सकते हैं. तो व्हाइट एज की जो ब्यूटी क्रीम है ये आपके चेहरे पर जो है ना फ्रेश लुक लाती है, आपके चेहरे की स्किन को फेयर बनाती है, आपके चेहरे पर जो है ना साइड इफेक्ट्स अगर काफी ज्यादा आते हैं तो उनको आपकी स्किन को जो है ना वो प्रोटेक्ट करती है और साथ साथ आपके चेहरे पर रिंकल्स हो, डार्क स्पॉट्स हो, ये सारी चीजें भी खत्म हो जाती हैं. तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो कि एक नाइट क्रीम है, आप रात के टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप इस्तेमाल करेंगे जनाब व्हाइट एज का ब्यूटी सोप. अगर आप सोप लगाते हैं तो व्हाइट एज का ब्यूटी सोप लगाएंगे. अगर आप फेस वॉश लगाते हैं तो व्हाइट एज का फेस वॉश लगाएंगे जो कि विटामिन सी से तैयारशुदा है. सोप जो है वो तो भाई एवोकाडो, एलोवेरा और मिल्क से तैयारशुदा है. बाकी अगर हम फेस वॉश की बात करते हैं तो उसके अंदर विटामिन सी है, यानी कि वो विटामिन सी से तैयार किया गया है. तो जो लोग भाई वाकई नेचुरल चीजें इस्तेमाल करना चाहते हैं, नेचुरल अज़ा से तैयारशुदा होने वाले प्रोडक्ट्स लगाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स. ये तमाम जो है ना प्रोडक्ट्स आपकी खूबसूरती के हिसाब से तैयार किए गए हैं और आपकी स्किन के हिसाब से तैयार किए गए हैं. और साथ में अगर आप गर्मियों का देखा जाए तो भाई अच्छा खासा सीजन चल रहा है और गर्मियों में हम मेकअप भी नहीं लगा पाते हैं और कोई ऐसा प्रोडक्ट हम तलाश करते हैं जो कि भाई हम लगाएं तो आपकी स्किन जो है ना वो ग्लो भी करती रहे, आपकी स्किन प्रोटेक्ट भी रहे. अगर आप धूप में जाते हैं, कोई काम करते हैं, कोई जॉब वगैरह करते हैं, पढ़ते हैं कॉलेज या फिर पढ़ाते हैं, ये तमाम तर जो बातें होती है ना देखा जाए तो उसमें भी आप लोगों को कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो कि डेली बेसिस पर आप इस्तेमाल करें और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के, तो आप व्हाइट एज की लवली क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं. क्योंकि व्हाइट एज की जो लवली क्रीम है ना ये जनाब रेडिएंट अल्ट्रा विटामिन से तैयारशुदा है, जिसके अंदर 30 विटामिन के कैप्सूल डाले गए ताकि आप लोगों की स्किन पर जो रिजल्ट्स मिले आपको बहुत ही शानदार मिले. और बात यहीं पर खत्म नहीं होती, इसके अंदर जो है ना वो सनस्क्रीन भी ऐड की गई है. सनस्क्रीन का ऐड करना जो है ना वो मुझे ये लगता है कि वो इसलिए क्योंकि अक्सर हम जो है ना फेयरनेस कोई भी क्रीम लगा लेते हैं तो फेयरनेस क्रीम लगाना काफी नहीं होता. अगर आप डेली बेसिस पर कहीं कोई काम करते हैं तो उस सूरत में सनस्क्रीन भी आपकी स्किन के ऊपर लगाना जरूरी होती है. तो जो लोग ये दोनों प्रोडक्ट्स नहीं लगा पाते हैं
या जिनको नहीं पता कि भाई दोनों चीजें कैसे कैरी की जाती हैं, कौन सा सनब्लॉक हमें लगाना चाहिए, तो उस सारी चीजों का जो है ना हल यही है कि बस आप व्हाइट एज की लवली क्रीम एक बस क्रीम परचेज करेंगे, उसके अंदर ही आप लोगों को ये सारी चीजें मिल रही हैं, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, इजीली लगा सकते हैं और फिर अपनी स्किन को खूबसूरत होता हुआ देख सकते हैं। व्हाइट एज की लवली क्रीम जो कि आप दिन के टाइम भी लगा सकते हैं, रात के टाइम भी लगा सकते हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, ईद आ रही है तो भाई ईद पर भी लगा सकते हैं, तैयार हो सकते हैं अच्छे से, और लड़के लड़कियां सभी लगा सकते हैं। इतना इसके अंदर ना शिमरी सा इफेक्ट है, जब आप इस्तेमाल करते तो ऐसे शाइनी हो जाता है आपकी फेस कि आपको ये लगता है कि भाई हम तो ग्लो कर रहे हैं, लोग आपसे पूछते हैं कि ऐसा क्या लगाया आपने कि आपका फेस इतना चमक रहा है। ये जी व्हाइट एज की लवली क्रीम होने वाली है, तो व्हाइट एज की लवली क्रीम आप लड़के लड़कियां सभी लगाइए, अपना फेस वॉश करके अच्छे से फेस को सुखा लीजिए, उसके बाद आप व्हाइट एज की लवली क्रीम अप्लाई करें। दिन में भी लगा सकते हैं, रात में भी लगा सकते हैं, कोई भी एज लिमिटेशन नहीं है, आप हर उम्र में इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे भी लगा सकते हैं, तो लगाइए जी और खूबसूरत रहिए और खूबसूरतियां जो है ना वो बांटते रहिए। और इसी के साथ साथ जो है ना ये तमाम प्रोडक्ट्स आप इजीली अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा सकते हैं, और डायल कीजिए 03-15-799-0595, ये नंबर आप डायल कीजिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाए। तो अवेलेबल कराते जाइए और जनाब खूबसूरत होते जाइए। और उसके साथ साथ मैंने बाकी आज आप लोगों से जो सवाल पूछा है उसको जरा दोबारा से रिपीट करते हैं, और टॉपिक मैंने आज आप लोगों से पूछा है कि गर्मी में सबसे ज्यादा डेंजरस जगह आपको कौन सी लगती है, वो जगह जहां पर लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं, या फिर वो जो ज्यादातर लोग किचन में दोपहर के वक्त खाना बनाते हैं, क्योंकि ये दो काम ऐसे हैं, मुझे ये लगता है कि अगर ये दोनों काम, अगर आप इन दोनों सिचुएशन से गुजर चुके हैं तो आप रिलेट कर रहे होंगे मेरी बातों से, ये दोनों जगह बड़ी डेंजरस है, और आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है ज्यादा कौन सी जगह डेंजरस है, ट्रैफिक में फंसना या फिर दोपहर के टाइम पर खाना बनाना। ओके जी, जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और साथ साथ आप कहाँ से हमें सुन रहे हैं ये बता दे जाइए, और आपके एरिया में मिल रहे हैं नहीं व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स ये भी आप मुझे बताएं, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि मेरे जो पाली पाली लिसनर्स हैं ये कौन कौन से लिसनर्स हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, और जनाब आपको रिजल्ट्स कैसे मिल रहे हैं बताइए ना।

ओके जी, बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर आप ट्रैक सुन रहे हैं। इसी के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपके मैसेजेस की जाने बात है, आपके कमेंट्स की जाने बात है, पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। अच्छा चाचा, आपने लिखा है आज हो सके तो राहत फतेह अली खान का ये वाला गाना लगा, ये तो थोड़ा इंडियन है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा इंडियन है। कोई और गाना सुनाते हैं, ठीक है, राहत फतेह अली खान का, या फिर आप ही बताएं कौन सा गाना सुनेंगे। और कहते हैं अल्लाह ना करे, चलिए बस ऐसे ही आप दुआ में याद रखा करें, मुझे फिर क्या ही होने वाला है। और उसके अलावा हेंजी हिदायतुल्लाह कहते, वैसे सिद्रा बदीन में तो रात में इतनी सर्दी होती है, मैं तो अच्छा सर्दी है, क्या बात है, थोड़ी इधर भी भेजिए जरा। चाचा कहते कराची में गर्मी कम कम बादल हैं, कराची आ जाओ चाचा के पास ईद करने। अब तो भाई ईद बहुत करीब आ गई है, अब तो कहीं नहीं जाने वाली मैं, बस घर पर ही करेंगे। वैसे गर्मी जब भी मतलब है ना, गर्मी का एहसास जब भी मुझे होता है, पता नहीं कि मेरी तबीयत इतनी चिड़चिड़ी हो जाती है ना, मैं इतना गुस्सा करने लग जाती हूँ, मैं मतलब लड़ने लग जाती हूँ लोगों से। तो ये बात है, मुझे पता नहीं क्यों गर्मी में ना मतलब मैं अजीब ही हो जाती हूँ, मेरे अंदर ऐसा इंसान जिंदा हो जाता है। शायद किसी ने नहीं देखा हो, आप लोगों ने तो नहीं देखा, बाकी घर वालों को पता है कि गर्मी में मैं कितनी बेजार हो जाती हूँ। तो गर्मी जब भी आती है तो मेरे घर वाले मुझसे थोड़ा दूर भागते हैं कि नहीं भाई गाना फजूल आए थे।

भी पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए, साथ साथ मुझे बताइए कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हो चुके हैं व्हाइट एश के प्रोडक्ट्स। अगर आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाना चाहते हैं तो आपके एरिया में मिलनी चाहिए ना। ये बड़ी सीधी सी और कॉमन सी बात है कि आपके एरिया में मिलने चाहिए। हाँ जी मिलने चाहिए, तो आप डायल कीजिए 03-15-799-0595। ये नंबर आपके आसानी के लिए है, अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो डायल कीजिए 03-15-799-0595।

अच्छा प्रेमचंद भाई हमारे साथ मौजूद है। हेलो, दूरी सिंतनियों आ चुके हैं समंदर पार से हमें सुन रहे हैं। अच्छा कहते हैं अदी सिद्रा गुड आफ्टरनून है बनाइस डिला ब्लेस यू द बेस्ट विशेस टेक केयर अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे और आपके नसीब अच्छे करी आमीन आमीन आमीन सारे बोलिए आमीन। और उसके अलावा हैं जी हमारे साथ नूरी संतोनियो भाई दोबारा मेरे अदी गाने के रिक्वेस्ट है। अच्छा डेडिकेशन सेंड करिए स्पेशली आप ईशान और हदीसा आसिम चाचा खालिद एंड नायाब के नाम ठीक हो गया जी। और पोइट्री लिखते हैं कि हर मुस्कुराहट सच्ची नहीं होती, कुछ लोग दिल पर जख्म छुपाने के लिए भी मुस्कुराते हैं। वाह वाह। अच्छा आदल लिखते हैं कि ना वो वक्त रहा ना वो शौक रहे ना वो जिद रही ना वो हम रहे, वक्त के साथ ऐसा ही हो जाता है, मतलब इन जो सबूत यो आता हाँ ऐसा वड़ा थी आयो मैच्योर हो चुके हैं। कश्यप खान हमारे साथ कहती है सलाम अलैकुम सिडो, मैं पैनल वाली कश्यप नहीं हूँ, मैं आपकी पुरानी वाली कश्यप हूँ। हाँ यूनिवर्सिटी में बिजी थी और अब वेकेशंस में आपके साथ साथ रहूंगी। चलिए मेरी जान आपको वेलकम करते हैं वापसी पर।

क्या बात है जी, क्या बात है। बहुत ही प्यारा गाना सुन रहे हैं और साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं। व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और इस्तेमाल करते जाइए। व्हाइट एज की ब्यूटी क्रीम जो कि एलोवेरा, एवोकाडो और मिल्क से तैयार की गई है, और साथ में अगर आप इस्तेमाल करना चाहते कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि आप नाइट क्रीम नहीं इस्तेमाल करते हैं, वैसे करके तो देखिए बड़ी अच्छी है, लेकिन अगर फिर भी आप नहीं करना चाहते तो आपके लिए व्हाइट एज की लवली क्रीम मौजूद है जो कि फेयरनेस फार्मूला है जनाब, फेयरनेस क्रीम जो कि आप इजीली लगा सकते हैं, हर उम्र का इंसान लगा सकता है, लड़के लड़कियां सब ही लगा सकते हैं। तो लगाइए और खूबसूरत रहिए।

अच्छा ये नूर हसन तुनियो भाई लिखते हैं, यदि मैं यहाँ से वापस जाकर लवली का जलवा जरूर परचेज करूंगा भाई का, आपसे प्रॉमिस। भाई आपने तो इसका नाम ही ये रख लिया है, लवली का जलवा। ऐसे ना दुकानदार को जाके बोले हमें लवली का जलवा दे, नहीं बाबा आप उन्हें बोलिएगा व्हाइट एज की लवली क्रीम दे दें, सही है, ताकि दुकानदार के खबर पे तो छावठन आया हो। अच्छा ये अनवर भाई, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं।

मेरे किशोर भाई कहते हेलो हाय, हम भी अच गया आदि, वेलकम वेलकम अदा। अनवर भाई कहते असांजा गम घटाइण वारी भेण आई लाड़कानो आई एफएम 88 जी क्वीन केड़ा हाल अथव, माशाल्लाह जबरदस्त प्रोग्राम करे रहा आयो। शमन जो कलाम अच्छा चले गानो, वैसे तमा थोड़ो बुधायो ता केड़ो गानो बुधन चाहियो ता शमन जो, उन खा अलावा बिल्कुल गर्मी में तमा के मजेदार गाना बुधराइना सी, जे तमा के गर्मी जो थोड़ो एहसास जको ना घट महसूस थे। हाड़ी मा भला भला गाना आ रही थी, वाकई मुखे लगे तो थोड़ी गर्मी घट जी गई। हां जी लॉजिक तलाश मत कीजिएगा। अच्छा दर्दे दिल हमारे साथ मौजूद है, वेलकम प्यारी। किशोर भाई कहते अदी आज मेरा मूड सही नहीं है। छा तू तब कश्यप कहती है चापे कैंसर किचन में तो फिर भी धूप नहीं होती, मुझे ट्रैफिक में फंस जाना बहुत मुश्किल लगता है, बुरी हालत हो जाती है बाइक पर। हाँ मेरा भी तकरीबन वो जो है ना वो ट्रैफिक में फंसने वाले लोगों की तरफ जाएगा, क्योंकि ये बहुत एक मुश्किल जगह होती है जहाँ पर अगर हम दोपहर के टाइम पर फंस जाते हैं और फिर ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा होता है, तब थोड़ा सा लगता है कि ये दुनिया के सबसे ज्यादा डेंजरस जगह है। अच्छा चाचा कहते हैं शिमरी साइड इफेक्ट नहीं, शिमरी सिर्फ इफेक्ट है, शिमरी इफेक्ट उसे बोलते हैं जो कि मतलब सोली सिंधी में तांग बुधाया जेके मायूं डिस्को हणंदियूं ना फेस ते, ऐं डिस्को डिस्को मतलब घणो डिस्को न, मतलब थोड़ो थोड़ो हल्को हल्को डिस्को हुजे, ऐं अगरि तव्हां पंहिंजे फेस ते लॻाईंदा उस समय हूंदा या फिर किथे बि हूंदा मेकअप न कंदा पोइ बि तव्हांजी स्किन जेका न चमकंदी रहंदी, उहो सफ़ा घणो वारो डिस्को न सफ़ा थोरो थोरो डिस्को जंहिंखे शिमरी चयो आहे, शिमरी इफेक्ट। मुझे मेकअप के बारे में ज्यादा नहीं पता, और क्योंकि मैं ऐसा है कि मैं लड़कियों की तरह मेकअप नहीं करती, इस वजह से मुझे ज्यादा नहीं पता मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं इस बारे में, लेकिन ये बात है जब मैंने व्हाइटिश की लवली क्रीम लगाई है ना तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इसके अंदर वाकई शिमरी इफेक्ट भी है, और महसूस क्या वाकई है, तो अगर आप भी लगाएंगे तो आपको भी फील होगा, जब आप अपने आप को देखेंगे आईने में तो आपको ऐसे हल्का हल्का डिस्को डिस्को नजर आएगा अपने फेस पे, और वो ग्लो करता रहेगा, आप ग्लो करते रहेंगे, तो इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है जब आप लगाएंगे तो आप खुद ही कहेंगे वाह वाह वाह वाह सिदरा सफा सही पई चवे। सुधा वनो आई वठी चो बाबा तां भी इस्तेमाल कयो व्हाइट एसी लवली क्रीम, इन ईद ते त तव्हां लाज़मी जी अगर तयार थींदा न त तव्हां व्हाइट एसी लवली क्रीम त लाज़मी वठो, ठीकु आहे। उन सां गॾु अगरि जेको आहे टाइम ई थियो आहे त असां न्यूज़ ब्रेक जी तरफ़ वेंदासीं, उन खां पोइ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आहिनि बाबा, सो तव्हां काॾे न वञो, इते वेठा हुजो, मां तव्हां सां गॾु हूंदमि पूरे पूरे टे बजे ताईं, सो हीअं वञी ओ हीअं मोटां थी, स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: फिलहाल पाकिस्तान वफद मोकिलण जो इरादो न आहे। आपणे हुरमत वारो मामलो साहेली मुल्कनि जो आहे। फ्रेमवर्क में हुरमत बाबति घणो ज़िक्र न आहे। एटमी मामले ते बि ॻाल्हियूं न करे रहिया आहियूं।

0: वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के चीनी अहमद साहब डी चांग से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तकरीब के खिताब कंदे चयो त मुल्क चैलेंजेस रखिन हालतन ऐं बोहरान में सदाई पाकिस्तान जो साथ ॾिनो। पाकिस्तान चीन सां अमनी सहकार ज्ञाती ॾियण लाइ तयार आहे। अमन जे क़याम बाबति काफ़ी अगबराई थी आहे। दुनिया नाज़ुक दौर मां गुज़रे पई। दुआ आहे त हमेशह लाइ अमन बहाल थिए। चीनी वज़ीर-ए-आज़म चयो त पाकिस्तान इलाक़ाई अमन लाइ हाकारी किरदार अदा कयो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां फील्ड मार्शल सदर आसिम मुनीर बि गॾु हो। सिंध असेंबली में अपोजिशन जो कराची में पाणी खोड ख़िलाफ़ एहतजाज। अपोजिशन मेंबर्स स्पीकर डाइस जो घेराव करे एजेंडा जूं कापियूं फाड़े छॾियूं। अपोजिशन MPs ऐं सूबाई वज़ीरनि विच में सख़्त जुमिलनि जी ॾे वरिती। अपोजिशन लीडर अली कुठी चयो आहे त पाणी जो मसलो अहम आहे। पहिरियां उन ते ॻाल्हायो, मूंखे ॻाल्हाइण जी इजाज़त न मिले त कंहिंखे बि ॻाल्हाइण न ॾींदुसि। घरू वज़ीर ज़ियाउल अंजार चयो त अव्हां पाणी ते सियासत न कयो, मामले वारे रथ आणियो, पोइ पाणीअ जे मसले ते ॻाल्हाईंदासीं।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोज हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
3: शदीद गर्मीअ सबब शहरनि खे गुज़ारिश कई वञे थी त सुबुह 11 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं ख़ासि एहतियाती तदबीरूं अख़्तियार कनि। गैर ज़रूरी तौर ते ॿाहिरि न वञो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो ऐं उन दौरान शदीद जिस्मानी कम खां पासो करियो। ॿारनि, बुज़ुर्गनि ऐं बीमार माण्हुनि जो ख़ासि ख़्यालु रखो। वधीक पाणी पीओ ऐं महफ़ूज़ रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध PDMA कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक ऐं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जे तावन सां पेश कयो वियो।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया गार्डन टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
4: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
5: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 ऐं 02424601000।
6: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राब्ते जे लाइ 03005569

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि फ़ौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 0301-399-2836
0: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1565-724।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 2:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

वाइटिश ब्यूटी क्रीम के बारे में जाना कि वो किस तरह का प्रोडक्ट है, आप उसे क्यों इस्तेमाल करते हैं. लेकिन यहाँ पर हम जरा आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में भी बताते हैं. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ 2 दिनों में वाज़े नतायज के लिए अगर आप कोई भी अच्छा सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए मौजूद है. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना, ये जनाब आप लोगों के हर स्किन के हिसाब से तैयार ना, तो ये जदीद अज्जा से तैयार शुदा है. इसके अंदर जो है ना वाइटामिन ई बीड्स शामिल है और साथ साथ माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन भी है. और अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो फार्मूला है ना वो इतना जबरदस्त है, इतना क्वालिटी इसकी मस्त है. और इसके अंदर ग्लूटाथायोन भी मौजूद है. और ये क्रीम रात भर जो है ना अगर आप इस्तेमाल करते हैं, सुबह उठकर अपना फेस वॉश करते हैं तब जाकर आपको महसूस होता है.

ये वाकई आप एक अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो ये वाइटामिन ई बीट्स मौजूद है ना, ये आप लोगों की स्किन को बहुत ही अच्छा वाला बना देते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं ये जनाब जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन के ऊपर कोई मसला तो नहीं होगा ना बाबा, कोई मसला नहीं होगा। और इसके अलावा आप लोगों को जो है ना, अगर स्किन पर पहले से बहुत ज्यादा मसले हैं, जैसे कि आपके चेहरे पर एक्नी का मसला है या फिर आपके चेहरे पर आंखों के नीचे हल्के आ चुके हैं, काफी ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, या फिर आपकी स्किन जो है थोड़ी सी डार्क हो चुकी है, तो अगर आप अपनी स्किन को निखारना चाहते हैं, अच्छा सा पॉलिश करना चाहते हैं, अपनी स्किन पर जो है ना वो कोई भी ऐसा निशान दाग नहीं देखना चाहते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम का ये फार्मूला है ना, ये इतना कमाल का है, लाइट वेटेड फार्मूला है। एक तो मजे की बात मुझे ये लगती है कि इसके अंदर कोई भी इतनी सारी चीजें नहीं डाली गई है जो कि आपको लगे कि भाई इतनी सारी चीजें डाल दी हैं और क्या ही फायदा मिलेगा हमें अगर आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जो कि भाई लाइट वेटेड हो, जिसके अंदर नॉर्मल सी चीजें ऐड की गई हो, वो चीजें भी ऐसी ऐड की गई हो जो कि आप लगाएं और आपका चेहरा चमकना स्टार्ट हो जाए। सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल ही आपको जो है ना वो खूबसूरत बनाने वाला है डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आप डी स्किन का फेस वॉश भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम अकेली नहीं है, जाहिर सी बात है इसके साथ हमने डी स्किन का फेस वॉश भी तैयार करवाया है। और डी स्किन का जो फेस वॉश है बिल्कुल जनाब, डी स्किन का जो फेस वॉश है ये हाइलोरोनिक एसिड सीरम फेस वॉश ही अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये आपकी स्किन को जो है ना वो हाइड्रेट करता है, आपके चेहरे को क्लीन करता है, आपके चेहरे पर जो है ना अगर बहुत ज्यादा ऐसे ड्राइनेस आ जाती है तो वो भी खत्म हो जाती है, आपकी स्किन चमकना शुरू हो जाती है, आपकी स्किन हेल्दी हेल्दी लगती है, जैसे ऐसा आपको ना महसूस होगा कि भाई आपकी स्किन में ना जान आ चुकी है, क्योंकि बहुत से लोगों की हम स्किन देखते हैं वो ना ऐसे बेरोनक सी लग रही होती है, बेजान सी लग रही होती है, तो अगर आपकी स्किन भी ऐसी, आप भी अगर ऐसी स्किन के मालिक हैं तो जनाब आप भी लाजमी इस्तेमाल करके देखिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ डी स्किन का फेस वॉश। ये दोनों चीजें आप इस्तेमाल करें, साथ में रात के टाइम लगाइए और सो जाइए, 2 रातें अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो भाईजान आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरत होते रहिए, क्योंकि खूबसूरतियाँ बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। आजकल के दौर में देखा जाए तो हर किसी की ये ख्वाहिश और डिमांड भी है कि हम खूबसूरत रहना चाहते हैं और खूबसूरत बनना चाहते हैं, तो बिल्कुल जी बहुत ही आसान तरीकेकार, बहुत ही आसान फार्मूला जब आप इस्तेमाल करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो बस आपने डायल करना है 03-15-799-0595। बिल्कुल जी 03-15-799-0595 ये नंबर डायल कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर कोर्ट में, सिटी में, शहर में अवेलेबल कराइए और आसानी से जाकर परचेज करते रहिए।

0: बिल्कुल नया प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से इस्तेमाल कर रहे हैं खूबसूरत होते जा रहे हैं और बताते भी जा रहे हैं यहाँ पर आपके पैनल की जाने बातें हैं तो मैसेजेस है उनको भी जरा देख लेते हैं। अच्छा इरम हमारे साथ कहती ओ मेरी प्यारी दिलबर दोस्त प्लीज प्ले सॉन्ग न दुआ थी लगे न दवा थी लगे तुम्हारा इस्तेमाल कयो जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम और तांके लाजमी लगंदी और कहती हाय अल्लाह
1: कोशिश कई
0: छिरक कढ़ो ये छोकरी। अच्छा ये मौजूद है हमारे साथ सकलीन अब्बासी कहते हैं कैसी हैं उम्मीद है कि अच्छी होंगी जी जी बिल्कुल बहुत अच्छी हूँ और अल्लाह करीम आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे सदका पंजतन का सदका। अच्छा चलें बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच आप हमारे साथ मौजूद है सकलीन।

0: अच्छा वफा अब्दुल गफार खास के लिए कहते हैं, सिद्रा मुस्कान आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ और आप बताइए आप कैसे हैं? कहती हैं आप मुझे अच्छा सा गाना सुनाएं। बिल्कुल जी आपको अच्छा सा गाना सुनाया जाएगा। और इरम कहती है सिर जानी वाइट एशियन टी स्किन ब्यूटी शो शायद नहीं। और अरीबा कहती है सलाम आपी जान कल मैं सारी बातें नहीं बताती हूँ आप लोगों को, सो बस मत पूछा करें। और मीरपुर खास अब्दुल्ला महर कहती है अस्सलाम वालेकुम बाजी वाइट एश ब्यूटी क्रीम नाइस है बाजी सॉन्ग सुनाए हो मेरा चन्ना का। ओके प्यारे भाई। मकसूद मल्हा कहते हैं सिद्रा मुस्कान जब आपका शो चलता है तो पड़ोसियों को ऐसा लगता है जैसे आप शो मेरे घर में कर रही हैं, और मेरे घर वालों की तो बात ही मत करें, उनके लिए तो जैसे घर में कोई पार्टी हो। मेरी दुआ है कि आपकी हर विश पूरी हो। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया मकसूद मल्हा। डीजे मुझे अहमद मुगल का गाना सुनाओ तुझा सपना। भाई ये प्रोडक्ट तो काफी टाइम से मेरी भाभियां इस्तेमाल करती हैं, कहती हैं कि ये हमने काफी टाइम से लगाए हैं। क्या बात है जी, क्या बात है। आपकी भाभियां लगाती हैं, उनको बोले मजीद लगाएं, और उनसे ये भी पूछें कि अगर वो इस्तेमाल कर चुकी हैं तो उनको रिजल्ट्स कैसे मिले हैं। और कहते हैं मकसूद मल्हा क्या कह रहे हैं आप, इतने आपने मैसेजेस कर दिए हैं। अच्छा टॉपिक का जवाब देते हैं कि किचन में खाना पकाना बहुत डेंजरस लगता है क्योंकि कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है, एक दूसरे को ताना भी देते हैं कि तुमने 3 रोटियां खाई, तुमने 4 रोटियां खाई तो खाई क्यों। ये बात है वैसे, अगर जो इंसान खाना बनाता है ना उससे पूछेंगे भाई खाना बनाना जो ना वो कितना मुश्किल काम होता है। मुझे लगता है खाना बनाना बहुत मुश्किल काम है, और ये एक ऐसा काम है जिसके बिना इंसान जिंदा रह भी नहीं सकता। तो सलाम है उन लोगों को जो खाना बनाते हैं।
1: मुते मौला राजिया मुखे लहर नकी लोडो।
0: अच्छा ये मौजूद है सलाम सिद्रा वाइट एज लवली क्रीम आपकी तरह लवली लवली ये हम इस्तेमाल करते हैं। लाड़काना से इमरान अली बिरोही भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वेलकम करते हैं प्यारे भाई को। और सकलीन अब्बास हमारे साथ। अच्छा सकलीन भाई आपका बहुत शुक्रिया। इरम कहती है

Okay. अच्छा वाकई सही बात है, कुछ बातें तो मैं वैसे ही हंस के टाल देती हूँ, और वो जो हंस के टाल देती हूँ ना बातें, वो ये बातें होती हैं कि दरअसल उन बातों पर शायद मुझे गुस्सा भी आ रहा होता है। वोट मोहम्मद अय्यूब थे बुखा भी बुला थे वो भाई कहते तवां जो शो वेरी नाइस आए सलाम तवां के वालेकुम अस्सलाम प्यारा भाई मोहम्मद तवां जो प्रोग्राम दो पया विलेज मोहम्मद इब्राहिम संदीलो से मोहम्मद हारून संदीलो है रऊफ मक्सी का गाना बिल्कुल जी आज आपको सुनाएंगे। और ये हमारे साथ मौजूद है आप ही जान में वापस आ गई आप, आपको नाम नहीं बताऊंगी इतनी जल्दी, आप ही पहले गैस कीजिएगा कि मैं कौन हूँ, आप ही ये भी गैस कीजिएगा कि मैं किसके साथ वापस आई हूँ, और आप खुद ही आई होंगी और आप हमारी शोनी हमारे साथ मौजूद है, शोनी आपको वेलकम करते हैं।

ओके जी, सो किशोर भाई आपका टॉपिक वाला मैसेज, हाँ बिल्कुल मैंने पढ़ा. आपने लिखा बस का सफर करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल आपको लगता है. बस का सफर वाकई मैंने 2-3 मर्तबा किया है शायद, वो भी मैं मतलब छोटी थी कराची में जब गए थे. कराची में बसेस चलती है, इधर तो मुझे नहीं पता, लाड़काना में नहीं चलती है. तो तभी किया था और वाकई वो काफी डेंजरस सीन था और वो बचपन की शायद बात है. फिलहाल तो अभी हम कराची जाते हैं तो बस में नहीं चढ़ती, अपनी गाड़ी होती है. तो ये चीज वाकई थोड़ी सी मुश्किल लगी है अगर देखा जाए और सोचा जाए तो. और बाकी गर्मियों के सीजन में देखा जाए तो मुझे ट्रैफिक वाला सीन बहुत ज्यादा इरिटेट करता है. और ये मेरी प्रोग्राम की टाइमिंग भी कुछ ऐसी है कि मुझे दोपहर में आना पड़ता है, जाना पड़ता है. तो जब ट्रैफिक का सीन होता है तब भाई जान चीज थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है. और उसके साथ साथ अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं जनाब व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, तो आप लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा. क्योंकि सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि आपके एरिया में अवेलेबल होने चाहिए. मुझे ये लगता है कि जब आपके करीबी जनरल स्टोर पर ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे ना, तब आप जाकर इजीली परचेज कर सकते हैं. आपके लिए ये मुश्किल बात नहीं होगी. जो लोग आकर मुझे ये कहते हैं कि बाजी ये सारे गोठ में नथो मिले, असाने करीबी जनरल स्टोर से नथो मिले, बाबा जेको तांके नंबर बुधाए बने तो प्रोग्राम में इन नंबर ते तमा राबतो कयो, माय नंबर तांके प्रोग्राम में लाजमी इन लाइ घड़ी घड़ी बुधाईंदी आहियां. त तमा इन ते राबतो कयो, उन्हनि खे ॾसियो त तव्हां किथां प्रोग्राम ॿुधो पिया ऐं किथे कहिड़े एरिया में अवेलेबल न आहिनि प्रोडक्ट, जीअं हू अवेलेबल कराए सके. सो तव्हां ज़रूर डायल कजो नंबर 03-15-799-0595. ठीकु आहे, नंबर डायल कयो, पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो ऐं उतां वञी आराम सां आसानी सां वठी अचो प्रोडक्ट. सही आहे, इस्तेमाल कयो. ऐं हाणे टाइम थियो आहे असां वठूं था शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. उन खां पोइ वापसी तव्हांजी मोटींदासीं. तव्हां कॾहिं न वञो, हिते वेठा हुजो. मां ईअं वञी ईअं मोटांदी. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग. White Ish and Skin Beauty Show.

0: GA FM 88
1: सिंध की आवाज।
2: शदीद गर्मी सबब शहरन की गुजारिश कई वजे थी तो सुबह 11 वगे का शाम 4 वगे ताई खास एहतियाती तदबीरों अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-858।
1: खुशखबरी हाणे अवां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0383-85-569।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते। खूब सिर्फ

ओके जनाब, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास. आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क. हाँ जी, मेरे साथ मौजूद है सखर मोरो, मीर प्रकाश, मटियारी, सकरण, मेहरापुर, मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो. हाँ जी जनाब, सो व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो में आप लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है. बिल्कुल जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम के लास्ट लिंक में. ओके जी, सो यहाँ पर आप लोगों को बताया जाता है कि किस तरह से आप अपनी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं. वैसे तो देखा जाए तो हर कोई आजकल इन्हीं चक्करों में है कि खूबसूरती को कैसे बढ़ाया जाए. और इन्हीं चक्करों में अगर आप बहुत ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जो कि बहुत ज्यादा हेवी हैं, जल्दी में आपको तो तेज रंग दे देते हैं लेकिन बाद में उनके साइड इफेक्ट आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा आने वाले हैं, तो लाइट वेटेड फार्मूला आप इस्तेमाल किया करें. ऑल स्किन टाइप के लिए जो प्रोडक्ट तैयार किए गए हैं वो इस्तेमाल किया करें और वो प्रोडक्ट लगाया करें जो कि नेचुरल अज्जा से तैयार शुदा हो. तो यहाँ पर आप लोगों को व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता है और उसी के साथ साथ डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में भी बताया जाता है. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को पहले मैंने बताया कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को आप इस्तेमाल करेंगे और साथ में डी स्किन का फेस वॉश भी आपके लिए मौजूद है. और साथ साथ में आप लोगों को व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी बता चुकी हूँ. तो जिन लोगों को नहीं पता, जिन्होंने अभी अभी हमें सुना स्टार्ट किया है, तो उन लोगों को बताते चलेंगे जब आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते तो उसमें आप लोगों को व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम मिलती है. ओके जी, सो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम के साथ आपको व्हाइट एज का ब्यूटी सोप मिल रहा है, आपको फेस वॉश मिल रहा है, व्हाइट एज की लवली क्रीम मिल रही है और उसके साथ डॉक्टर पिंपल का एंटी एक्नी ट्यूब मिल रहा है. अच्छा, मैंने आपको सारे प्रोडक्ट के बारे में बताया लेकिन डॉक्टर पिंपल ट्यूब के बारे में नहीं बताया. तो इसके बारे में भी जाना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि देखा जाए तो बहुत से लोग, अगर आजकल गर्मियों का सीजन चल रहा है तो गर्मियों में लोगों की जो स्किन है ना उसके ऊपर बहुत ज्यादा दाने निकल आ रहे हैं. एक्नी से अगर आप भी जो है ना वो काफी ज्यादा परेशान है, एक्नी को खत्म करना चाहते हैं, दानों को खत्म करना चाहते हैं, और ऐसा है कि भाई आपके चेहरे पर दाने बहुत मुख्तलिफ हैं, कुछ लोगों के चेहरे पर दाने बड़ी अजीब से निकल आते हैं और कुछ लोगों के चेहरे पर दाने नॉर्मल टाइप जैसे दाने होते हैं वैसे ही दाने होते हैं, तो अगर आप डॉक्टर पिंपल का एंटी एक्नी ट्यूब इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर पिंपल नाम से जब आप परचेज करने जाते हैं तो आपको इजीली मिल जाता है. तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो आप परचेज करेंगे, ये जनाब आपके चेहरे को क्लियर बनाता है, एक्नी ट्रीटमेंट के लिए आपके चेहरे के एक्नी से फाइट करता है, और आपके चेहरे पर अगर बैक्टीरिया हो या ऐसी चीजें जो कि आपके चेहरे पर एक्नी बनाने का सबब बनती है उन चीजों को खत्म करता है. और अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं डॉक्टर पिंपल का ये ट्यूब तो ये फुल आयुर्वेदिक फार्मूला है जनाब, आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा. और उसके अलावा एक और मजे की बात बताऊं तो जनाब, ये जो डॉक्टर पिंपल का ट्यूब है ना, इसे आप अपने चेहरे पर अप्लाई किस तरह करेंगे ये चीज भी आप लोगों को बताऊं. तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो रात के टाइम इस्तेमाल कीजिएगा, रात का टाइम बहुत अच्छा टाइम होता है, रात के टाइम इस्तेमाल कीजिएगा, अपना फेस वॉश अच्छे से कीजिएगा, अपना फेस क्लीन रखा करें. उन लोगों से मैं कहती हूं जिन लोगों के चेहरे पर दाने होते हैं तो वो तो अपना फेस मतलब लाजमी क्लीन रखा करें, बहुत ज्यादा क्लीन रखा करें. और बाकी जो लोग एक्नी नहीं आपके चेहरे पर फिर भी आप अपना चेहरा जो है ना वो क्लीन रखा करें, अच्छी बात होती है. तो चेहरे को क्लीन करें अच्छे से, उसके बाद अच्छे से सुखा लीजिए, फिर आपके चेहरे पर जहां जहां दाने हो, एक्नी हो, पिंपल हो, निशान हो, जलने का निशान है, चोट का निशान है, कोई भी निशान हो, कितना ही जिद्दी निशान, उसके ऊपर आपने डॉक्टर पिंपल का ये जो ट्यूब है ना ये अप्लाई कर देना है जहां जहां पर आपके मसाइल हो वहां वहां पर. या आप जो है ना लगाने के बाद सुकून से फिर आप सो जाइएगा, सुबह उठकर अपना फेस वॉश कीजिएगा, फिर आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर जो कमाल है ना वो हो चुका होता है और आपके चेहरे पर अच्छे वाले रिजल्ट्स आपको मिल चुके होते हैं. तो लाजमी आप ट्राई कीजिएगा डॉक्टर पिंपल का ये ट्यूब जो कि आपको इजीली कहीं से भी मिल जाएगा. नहीं मिल रहा है तो वापस से आप नंबर डायल कीजिए, वो तो आपके पास मौजूद है ही है. तो नंबर है जनाब 03-15-799-0595. ये नंबर आप लाजमी डायल कीजिएगा ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर पर भी अवेलेबल हो जाए डॉक्टर पिंपल का ट्यूब, व्हाइट एज की लवली क्रीम, डी स्किन ब्यूटी क्रीम, डी स्किन फेस वॉश, व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, व्हाइट एज फेस वॉश, व्हाइट एज का ये जो विटामिन सी का फेस वॉश है ना ये भी आप लाजमी लगा कर देखिएगा. और इसके अलावा बहुत सारे और मजेदार प्रोडक्ट जो कि आप लगाना चाहते हैं तो लगाइए, खूबसूरत रहिए और खूबसूरतियां बांटते रहिए. लोगों को बताइए कि भाई जान इतने मजे मजे के प्रोडक्ट्स मार्केट में मिल रहे हैं, तो जाइए परचेज कीजिए.

वैसे ये गाना आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, उसके साथ साथ ये गाना तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ये गाना आजकल आप जरा अपने महबूब पर ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा चल रही ना, तो नंगे पैर अगर वो आएगा तो फिर मसला हो जाएगा। बस सिर्फ आप सुनकर जरा अपने दिल को खुश कर लीजिएगा।

0: पोस्ट को लाइक और शेयर करें। आज आप लोगों के लाइक्स मुझे जरा कम नजर आ रहे हैं, तो पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए जिन लोगों ने नहीं किया। और उसके अलावा अपनी जो है ना, अच्छा हाँ, आप कहाँ से हमें सुन रहे हैं ये भी मुझे बताते जाइए। ये गाना खत्म हो चुका है, एक और गाना हमारी लिस्ट में मौजूद है, मुमताज वाले के गाने की। इस गाने की फरमाइश काफी दिनों से हमारी इरम कर रही थी, सो आज हम ये वाला गाना भी सुनेंगे। अच्छा शोनी कहती है बिल्कुल बिल्कुल आप ही, मैं हूँ शोनी। हाँ भाई मैं आपको पहचानती हूँ। और उसके अलावा इरम कहती है यार जवाब है ट्रैफिक में फंस जाना बहुत डेंजरस है। ओके और ये हमारे साथ कहते हैं तुम्हें क्या सुनाओ।
1: सिक सजन जी थी बार।
0: अच्छा चलें बहुत शुक्रिया।
1: नूर हसन उनड़ सा दिल बरखे।
0: ओके जी इमरान अली बिरोही भाई हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच। फकीर राहिब माशूक मेमण मिठल मेमण आसिम मेमण बेरिया सिटी कोर्ट बहादुर या अली मदद जी मौला अली सलाम मदद आपको वेलकम करते। मजनू आपने लास्ट में लिख दिया है, बहुत शुक्रिया।

0: इमरान खान रुक हमारे साथ मौजूद है, कहते हैं नाइस प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच। निदड़ी कहती है टॉपिक जीना जीना अच्छा। और स्मार्टो गोपांग हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं आई एम लिसनिंग योर प्रोग्राम कंबर सिटी से, आप हमारे साथ ही, आपको शो पसंद आ रहा है, मास्टर मंजूर का आपने गाना लिखा है, चलो ये गाना आपको सुनाएंगे ठीक है, लेकिन आज अगर ना हो सका तो फिर कभी। और हजार खान जतोई हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम हजार भा, खुश आयो। आमिर खान महेसर हमारे साथ हैं, हेलो।
1: तबीयत मुझी न तबी बस,
0: आमिर खान महेसर वालेकुम अस्सलाम। किशोर भाई कहते हैं शुक्र आज मूड खराब हो सही हो जी, यहाँ तो खराब थी, मतलब खराब हो तो सही थी, हो सही हो जी यहाँ तो खराब थी,
1: यहाँ तबी
0: यो भी सही है।
1: हाला मुझे जी न
0: चलो पोए तमाणे नहीं गालते बी स्किन ब्यूटी क्रीम लास्ट में लग वैसे तमा त यो चयो ना तमा वो प्रोडक्ट लगाए ना जे अंदर खीर आए सो खीर त वाइट एश ब्यूटी क्रीम जे अंदर आए सो त वाइट एश ब्यूटी क्रीम लगाए रे सही है।
1: थी लगे ना दुआ थी लगे ना दवा थी लगे ना दुआ थी लगे।
0: अच्छा बिल्कुल बिल्कुल वाइट एश ब्यूटी क्रीम जे अंदर तमा के खीर भी मिलंदो यानी कि तमा के मिलंदो ना बस वो इन में अंदर आए ही तमा लगाए ना त तवा जी स्किन के वे नजा रिजल्ट मिलंदा सो तमा वाइट एश ब्यूटी क्रीम लगायो ऐं तव्हांखे इलाही सारा भला भला रिजल्ट मिलंदा। उन खां अलावा ये सनावला बिरोई हमारे साथ मौजूद है, हेलो जी जी क्या प्यारे भाग है। अच्छा चाचा खालिद कहते हैं लास्ट सेडी लिंक कल वाह वाह चाचा, मतलब आप इतनी टाइम से शो सुन रहे थे आपको सारी चीजों का अंदाजा हो चुका है कि हाँ जी अब ये ऐसे होने वाला है और ऐसे होने वाला है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए जी। निदा कहती वैसे ये ईद कब है, कल का दिन छोड़कर फिर अगले दिन ईद है। नूर से दुनिया भाई कहते ईद जुम्मे को है, हल्लुड़े अदो तला केड़ी

ना देखे त कुछ भी नथो लगे चलो असा ते एडो कम था क्यों ही वारो लास्ट ट्रैक लगायन था प्रोग्राम में आई प्रोग्राम जो टाइम जका वो भी मनी सफा थोड़ो बचो आ है सो तमा से जगत मौजूद आ है प्रोग्राम आ है जना तमा जो पेन जो व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पोंसर्ड थे पयो तमा ताई व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लावन सा सो तमा इस्तेमाल कयो पया खूबसूरत थियो पया आई खूबसूरती की हासिल कयो पया।

बताइए आप क्या कर रही है, मुझे इतनी हंसी आ रही है कसम से। वासु भाई आपको वेलकम हो गया। टाइम थोड़ा बचा ना वरना वाकई शायरी पढ़ लेती मैं। चाचा खालिद कहते हैं ये दुनिया बड़ी जालिम है, किसी को खुश रहने नहीं देती। वैसे सही बात है।

वैसे ये गाना हमने मेल वर्जन में सुना है ना, इस गाने को हम कभी फीमेल वर्जन में भी सुनेंगे लेकिन फिर कभी, आज टाइम खत्म हो गया। और ये हैं जी हमारे साथ अब्दुल करीम मरी भाई, वेलकम हो गया आपको। इंशाल्लाह वरी तव्हां सां मुंहिंजी मुलाक़ात थियण वारी आहे सुभाणे वारे प्रोग्राम में 1 बजे खां 3 बजे ताईं असां तव्हां सां गॾु हूंदा आहियूं। अच्छा हितेश भी हमारा शो सुन रहे, हितेश छोटे हीरो आपको वेलकम करते हैं। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहिएगा ताकि खूबसूरत हो जाए आप।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: वतन की मोहब्बत से सरशार सरजमीन सिंध अब गूंज रही है जीए एफएम 88 की सरमस्त आवाज से।
2: तो डालो धमाल और बोलो
1: जीए एफएम 88
2: सिंध की आवाज।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: जीए एफएम 88 नेटवर्क
4: सिंध की आवाज।
5: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
6: शदीद गर्मीअ सबबि शहरनि खे गुज़ारिश कई वञे थी त सुबुह 11 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं ख़ासि एहतियाती तदबीरूं अख़्तियार कनि। गैर ज़रूरी तौर ते ॿाहिरि न वञो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो ऐं उन दौरान शदीद जिस्मानी कम खां पासो करियो। ॿारनि, बुज़ुर्गनि ऐं बीमार माण्हुनि जो ख़ासि ख़्यालु रखो। वधीक पाणी पीओ ऐं महफ़ूज़ रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक ऐं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जे तावन सां पेश कयो वियो।
7: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे, कील महासे और बेजान पन, अब सबको कहें अलविदा बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम। चेहरे की जिल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सावली रंगत अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाएं साफ, निखरी और गोरी रंगत। लेकिन याद रखें, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप।

0: कॉलम में मौजूद आहिनि फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: शदीद गर्मी के बाय शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। ये आवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PTMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ताबुन से पेश किया जा रहा है।
2: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे।
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर। राब्ते जे लाए 0320180003।
5: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारी जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर निमाज खां इशा जे निमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0383-85-569-0300-33-8-55-69।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा?
8: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
7: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
8: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
7: राब्ते लाए हाकिम अली जिसकानी
9: 0301-399-2836।

0: तो मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: हलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचणु शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851।
1: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे
2: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
3: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राब्ते जे लाइ 0385-569-0300-3-8-5-6-9
4: अस्सलाम वालेकुम अदा
5: वालेकुम अस्सलाम

0: सूरमन मेमण 0301-380-8347।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।

अब ब्लेंडर से लहसुन और प्याज की स्मेल खत्म करने के लिए पानी का एक कप लें, उसमें 2 से 3 कतरे लीमू की एक चुटकी बेकिंग सोडा डालकर इसे इस पानी को ब्लेंडर में ऐड करें और 30 सेकेंड चलाएं ब्लेंडर को। उसके बाद वॉश कर लें। इसके बाद जो है ब्लेंडर से लहसुन अदरक की जो स्मेल आ रही है वो भी खत्म हो जाएगी और ब्लेंडर में जो है खुशबू मतलब के चमक भी जाएगा आपका जो ब्लेंडर है वो।

0: अब आप सुनेंगे जीए
1: वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीन के सदर काबिले शिकस्त करार लागापन के वधीक मजबूत बनाने के इतफाक शी जिनपिंग चीन पाकिस्तान से दोस्ती के घनी अहमियत दे तो विचोभर में अमन के कयाम लाए पाकिस्तान जो किरदार सारा जोगो है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चो पाकिस्तान चीन के पैं एतमाद जोगो दोस्त समझे तो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीनी हम मनसब सा भी मुलाकात कई बिन्हीं मुल्क विच में मुख्तलिफ़ मुआहिदन यादाश्तनामन सयूं भी क्यों।

0: ईरान अमरीका सां जंग जे खात्मे लाइ शुरूआती फ्रेमवर्क ते इतफ़ाक़ थियण जी तसदीक करे छॾी। ईरानी परडे॒ही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल वाकाई चयो आहे त जंग जे खात्मे लाइ अमरीका सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। शुरूआती MOU ते पहुचण जो मक़सदु ईरान ऐं अमरीका में मुआहिदे जे वेझो पहुचण नाहे। फ़िलहाल पाकिस्तान वफ़द मोकिलण जो इरादो नाहे। आबन हुरमज़ वारो मामिलो साहिली मुल्कनि जो आहे। फ्रेमवर्क में हुरमज़ बाबति घणो ज़िक्र नाहे। एटमी मामले ते बि ॻाल्हियूं न करे रहिया आहियूं। ईरान सां मुआहिदो मुकमल तौर ते तय नाहे थियो। असांजो मुआहिदो ओबामा वारे मुआहिदे खां उबतड़ आहे। मुआहिदे खे अञा कंहिं ॾिठो ई नाहे, नई कंहिंखे नुक़्तनि जी ख़बर आहे। अमरीकी सदर ट्रंप चयो त नाकाम माण्हुनि जी ॻाल्हियुनि ते ध्यान न ॾिनो वञे, ख़राब डील नाहे कंदो। परडे॒ही वज़ीर मार्को रुबियो चयो त ईरान सां डील ते कम हले पियो। थी सघे थो त ईरान सां अॼु कंहिं मुआहिदे ते पहुची वञूं। आपने हुरमज़ खोलियो वञे ऐं वक़्तु तय करे एटमी मामले ते ॻाल्हियूं कयूं वञनि। ईरान ऐं अमरीका विच में हलंदड़ ॻाल्हियुनि दौरान दुरुस्त रुख में अॻभराई थी रही आहे। अमुन जी बहाली ऐं मामूल वारनि इक़्तिसादी सरगर्मियुनि लाइ गॾिजी कम करणो पवंदो। बीजिंग में तकरीब ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो आहे त दुनिया विच ओभर जे बहरान सबबि नाज़ुक मरहले मां गुज़रे रही आहे। पाकिस्तान अमरीका ऐं ईरान विच में सालसी लाइ दिलि सां कम कयो आहे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ऐं नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ ईरानी अमरीकी ऐं विच ओभर जी क़यादत सां राब्तो करे अहम किरदार अदा कयो आहे। सिंध असेंबली में अपोजिशन जो कराची में पाणी कोट ख़िलाफ़ एहतजाज। अपोजिशन मेंबर्स स्पीकर डाइस जो घेराव करे एजेंडा जूं कापियूं फाड़े छॾियूं। अपोजिशन MPAs ऐं सूबाई वज़ीरनि विच में सख़्त जुमिलनि जी ॾे वठि। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी चयो आहे त पाणी जो मसइलो अहम आहे, पहिरियां उन ते ॻाल्हायो। मूंखे ॻाल्हाइण जी इजाज़त न मिली त कंहिंखे बि ॻाल्हाइण न ॾींदुसि। घरू वज़ीर ज़ियाउल अंजार चयो त अवां पाणी ते सियासत न कयो, मामले वारी रथा आणियो, पोइ पाणीअ जे मसइले ते ॻाल्हाईंदासीं। सिंध में तकरारनि तां ॿ ॼणा क़तल, ॿिनि औरतुनि जा लाश हथ। लाड़काणे वेझो माहूटा में वारनि जी ॻाल्हि तां झेड़ो, नौजवान क़तल। दावदाई सिम शाख वारे इलाइक़े में शेख ऐं कुंभर बरादरी जे बिंदुनि में ॿारनि जी ॻाल्हि तां झेड़ो थियो, जेड़े दौरान मुज़फ़र कुंभर क़तल। वाटसन मूजिबि ॿारनि जी ॻाल्हि तां ख़ुबदार शेख ऐं ॿिनि गोलियूं हणी नौजवान खे क़तल कयो आहे। बख्शापुर पटसां डोमकी ऐं जखराणी ज़ोरनि में झेड़ो, हिकु ॼणो क़तल। ज़मीन जे मालिकी तां झेड़े जे नतीजे में मोटण डोमकी मारिजी वियो। मेरापुर में घर मनारी सुमेरा ज़ाल इमरान आराई जो घर मां लाश मिलियो। पुलिस जो चवण आहे त औरत जो मुड़ुस कराची में कमु कंदो आहे। बदीन बरसन आरे जो घर अंदरि कमरे मां फाओ लॻल लाश हथायो। घोट इक़बाल सारे जो में 17 सालनि जो भागुती जो घर मां लाश मिलियो। वारसन जो पोस्टमार्टम कराइण खां इनकार।
1: राति बसि इहो वियासीं हिते वॾेरे जी ओताक ते, हुते वॾेरो बि असांजो भाउ चौकीदारी कंदो अथसि। वॾेरो हुते वेठो टे लॻे त हिते रस्ते में साह ॾिनई।
2: वॾेरा माण्हू आहिनि, ख़ैर थी आहे, लॻी
3: आहे। साफ़ थींदो आहे कॾहिं तव्हां
4: बीठो न अमीराणो ॿार हो, पोइ हाणे कंहिंखे छा ख़बर
1: आहे। केस दाख़िल अचानक हादसो थी रहियो आहे, दलाल खान ते कराईंदा।
0: थुल पुलिस वडेरे सईद सरकीअ जे पुट तां क़तल थियल चौकीदार जो केस रोअण जूं तयारियूं करे छॾियूं। वाकिए खे इतफ़ाक़ी करार ॾेई केस दाख़िल कंदड़ पुलिस वडेरे जे पुट बिलावल सरकी खे गिरफ़्तार करण लाइ के बि क़दम न खयां। पुलिस केस में का बि अॻबराई न थियण जी तसदीक करे छॾी। ग़रीब पुर जो कुटुंब बासण जे ख़ौफ़ सबबि ख़ामोश थी वियो। ज़रीन जो चवण आहे त पुलिस बासर बोतारनि जे दबाउ ते जवाबदार खे गिरफ़्तार करण बदिरां बचाए रही आहे। साझा वंदन पारां जवाबदार गिरफ़्तार करण जो मुतालबो।

सजावल में धीअ मुड़ुस सां गॾिजी पीउ खे क़तल करे छॾियो, ज़ाल मुड़ुसु गिरफ़्तार। पुलिस मूजिबि घोट कारो माछी में नाठी पंहिंजे सहुरे सावण माछी खे छुरियुनि जा वार करे क़तल कयो। वाकिए में मक़तूल जी धीअ फरज़ाना जे में शामिल हुजण जो इंकशाफ़ थियो आहे। जवाबदार जानी फरज़ाना खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। वधीक जांच जारी आहे।

0: बांसिराबाद में आबाद गरन जो पानी कोड क्लब धरनो भान मोरीवर धरनो है शाखन में पानी छोड़ करण जो मुतालबो टिकराटो वेजो बम्बली माइनर जो पुतले जी आबाद गरन जो पानी कोड क्लब धरनो पानी चोरी रोके पुछड़।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजे गए रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे के ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی بنے تھی تو صبح 11 وگے کھا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن غیر ضروری طور تے باہر نہ ونیو ہلکا کپڑا پائیو متھو ڈھکے رکھو ائی ان دوران شدید جسمانی کم کھا پاسو کریو بارن بزرگن ائی بیمار مانن جو خاص خیال رکھو ودیق پانی پیو ائی محفوظ رہو ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک ائی سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ دے تعاون سا پیش کیو ویو
5: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां तरते सुदा आहन मिशन क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राबते जे लाइ 0300-3385-569-0300-3389।
6: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट।

0: कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिये थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 03201800003
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शरण तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मजे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राबते जे लाइ 0385769
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडापुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस होंडा कंपनी जा
2: जुमे जे दी ऑपरेशन
1: खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पेंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जापानीज टेस्टिंग मशीन जरिए जे में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी कंप्यूटराइज्ड जब ये कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320180003
3: और

एक बात हो तो बताऊं, पाकिस्तानी आवाम तो बात बात पे लड़ जाती है. अगर दो लोगों की लड़ाई हो रही है, अगर आप उनमें मुकमुकाओ करा भी दें तो फिर आपकी खैर नहीं है. जिसकी लड़ाई हो रही है वो लड़ाई छोड़ देंगे, उसके बाद आपके घर वाले ने स्टार्ट हो जाना है कि तुम्हें ज़रूरत क्या थी पराए जो है फड्डे में टांग अड़ाने की. हाँ, ऐसे ही जो है ना फिर कहे जा रहे होते हैं कि आपको किसने कहा था उनके झगड़े में आपने जाके जो है बीच में छलांग क्यों लगाई. अक्सर यू आर राइट, और ये वाले सीन आपने भी लगता है देखे हैं. ये हमारे साथ है सदाकत हुसैन मीरानी साहब, बच्चल शाह मियानी सखर से बाजी, एडवांस ईद मुबारक सेम टू यू. आपके शो में पहली मरतबा शामिल हो रहा हूँ, उम्मीद है कि आप वेलकम कहोगी. हाँ, ये मुझसे मिस्टेक हो गई है भैया, आपने सखर से मुझे ज्वाइन किया है और मैंने पहले आपका मैसेज काफ़ी पहले रीड करना था, मैसेज बहुत लेट रीड किया है और अभी आपके स्टेशन पर जो है प्रोग्राम ये वाला नहीं हो.

ना जाने इन्होंने हमारा जो है वो गाना चलाया या नहीं चलाया, गाना चल जाता है फिर बाद में फरमाइश। अच्छा मुझे अपना प्रोग्राम जो है ना वो योर चॉइस टाइप का प्रोग्राम लगता है। फरमाइश ऐसे कर रहे होते हैं जैसे मेरा प्रोग्राम जो है ना वो योर चॉइस प्रोग्राम है। जल्दी जल्दी बताएं, हम प्ले करते हैं आपकी चॉइसेस, जैसे गीत कौन से चलने हैं। लेकिन आप लोगों की फरमाइशें ना कभी खत्म नहीं होने वाली। जनाब वन एंड ऑनली, बहुत ही प्यारी जादुई आवाज है नाहिद अख्तर की, एंजॉय कीजिए। स्ट्राइक और ट्रेक के बाद ब्रेक, ब्रेक के बाद हम और आप फिर से साथ।

0: हर पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क
1: किलन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपके जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: शदीद गर्मी सबब शहर के दिन की गुजारिश कई बने थी। शदीद गर्मी सबब शहरन की गुजारिश कई बने थी तो सुबह 11 वगे खां शाम 4 वगे ताई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम खां पासो करियो। बारन बुजुर्गन बीमार मानन जो खास ख्याल रखो। वधिक पानी पियो, महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध PDMA कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स पॉट्स को करें ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-9196-851।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन।

0: जरिए कई बने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जहर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 0307-35-92120।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो, मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा

0: सबसे बड़ी इमारत का क्या नाम है? दुनिया की सबसे बड़ी इमारत का क्या नाम है अगर आपको मालूम है, सवाल का जवाब आपने डायल करना है 0313-6615688। उसके साथ ही साथ आपको बताते चलें, एसएमएस करने का तरीका मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में आपने एमपी के लिखना है कि स्पेस देना है, नाम और पैगाम लेकर रवाना कर देना है 8881 पर लाइव कॉल के तौर पर। प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए डायल करना है 0313-6615688। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत का क्या नाम है, ये है हमारा सवाल, इसका बताना है आपने हमें जवाब।
1: कोई पागल समझता है मैं तुझसे।
0: ओके जी, और आपने हमें बताना है दुनिया की सबसे बड़ी इमारत का नाम क्या है। आपकी कॉल्स अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम यास्मीन, क्या जवाब है सवाल का, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत का क्या नाम है? राइट आंसर, बहुत शुक्रिया यास्मीन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके, और बुर्ज खलीफा ही राइट आंसर है इस सवाल का। और दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट सार्फीन कहाँ है, किस कंट्री में है, किस मुल्क में है, ये आपने सवाल तो पूछने दिया करें, लगातार कंटिन्यू आ रही होती है। नंबर 615, दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट सार्फीन कहाँ है, ये आपने हमें बताना है। और आपकी क्या बनाते हैं,

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम
0: बाहर से भेजे गए रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे के ग्रैंड प्राइज और साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेज, आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

है जो दूर हो तो कुछ पास नहीं, कोई तुमसे पूछे कह देना कुछ। सामने को जी FM 88 की लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं सब दोस्त हमारे ही एंडिंग। हम सुनो हम नाराज हैं तुमसे, बहुत नाराज हैं, बहुत मजबूर होना तुम, बहुत मसरूफ होना तुम, हमें तो याद कर वक्त बर्बाद करने का है, हमको याद करने का। तो हम भी तुमको बता देंगे कि बहुत मजबूर हैं हम भी, हमें भी काम है कितने हैं, तब हम आंखें ना खोलेंगे, कभी तुमसे ना बोलेंगे, कभी तुमसे ना बोलेंगे। सुनो हम नाराज हैं तुमसे, बहुत नाराज हैं तुमसे। मैंने पूछा कैसे हो, मैंने पूछा कैसे हो, बदले हो या वैसे हो, रूप वही अंदाज़ या फिर इसमें कमी कोई, हिजर का कुछ एहसास तो होगा, कोई तुम्हारे पास तो होगा, मैं बिछड़ी मजबूरी थी, कब मंजूर मुझे ये दूरी थी, साथ हमारा कब छूटा है, रूह का रिश्ता है, आंख से जो आंसू बहते हैं, तुमको खबर है क्या कहते हैं, राज हमारी फूल फूल वफा के खिल, एक दिन फिर हम मिल, एक दिन फिर खास FM 88 के लाइव साथ आरजे गुलनाज और जनाब अब आपका भी वक्त है। SMS भी शामिल प्रोग्राम करते चले। अक्सा कहती है गुल समझदार आप बोल रही हो, गुल शो सुनते हुए हैंड फ्री लगी होती है। अगर हंसती हूँ घर वाले बोलते हैं कि क्या पागल हो, बिला वजह हंस रही हो गुल, मैंने बोल दिया अम्मा गुल बोल रही है। नेट ऐसे तंग करता है जैसे सास बहू को तंग करती है, ये मेरी भाभी भी बैठी हुई थी वहीं, शुक्र करो आपकी पिटाई नहीं हुई है इस बार। कभी कभी हमारे मॉम्स जहाँ बैठी होती हैं उनके आसपास ऐसी जो है तशद्दुद वाली चीजें मौजूद होती हैं, और उनका निशाना भी बिल्कुल परफेक्ट होता है, इतनी परफेक्ट टाइमिंग तो बॉलर की विकेट पे बॉल दे मारते वक्त भी नहीं होती जितनी हमारी अम्मा कोई चीज उछाल दे हमारी जानिब, ऐसा ही है ना। एक दिन आदमी ने अपने बेटे को समझाने के लिए एक शीशे के सामने खड़ा करके पूछा, बेटा इस शीशे में तुम्हें क्या नजर आ रहा है? बेटे ने जवाब दिया, अब्बा दूसरी तरफ लोग नजर आ रहे हैं। फिर बाप ने उसे आईने के सामने खड़ा किया, पूछा अब क्या नजर आ रहा है? बेटे ने जवाब दिया, अब्बा मुझे अपना चेहरा नजर आ रहे हैं। बाप ने कहा, देखो बेटे ये दोनों ही शीशे, एक पर चांदी का मलमा चढ़ाया गया है तो इसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपना आप नजर आ रहा है, दूसरे पर कुछ भी नहीं चढ़ाया तो इसमें से तुम्हें दूसरी तरफ के लोग नजर आ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर तुम सिर्फ शीशा बनकर रहोगे तो तुम्हें दूसरे लोग नजर आते रहेंगे, लेकिन अगर तुमने अपने आप पर सोने या चांदी का मलमा चढ़ा लिया, आईना बन जाओगे, लोग तुम्हें नजर आना बंद होंगे, सिर्फ अपना आप नजर आएगा, और जब अपना आप नजर आएगा तो अपना आप नजर आने से इंसान में तकब्बुर बढ़ता है। हमेशा शीशा बनकर रहना ताकि लोगों के दुख दर्द गम और तकलीफें तुम्हें नजर आती रहें। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है, गर्मी का मौसम है, बहुत से परिंदे आपके घर की मुंडेर से छत से गुजरते हैं, कोशिश किया करें दाना और पानी किसी बर्तन में रख दिया करें, और उसके साथ ही साथ कौआ जो है वो बाजरा नहीं खाता, बारीक छोटे छोटे दाना है वो नहीं खाता, कोशिश किया करें रोटी के टुकड़े उसके लिए रख दिया करें। ये वही बहुत छोटी सी नेकी है जो रोजे मैशर आपके जब तराजू का पलड़ा नीचे की जानिब झुकने लगेगा, ये वाली नेकी जब उसमें डाल दी जाएगी तो वो बहुत भारी हो जाएगा। तो ये जो आपकी छोटी छोटी सी नेकियां हैं ये आपकी जिंदगी में बहुत सारी मजबूत चेंजिंग्स लाएंगी, वो मजबूत चेंजिंग आपकी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना देंगी। अपने लिए तो सभी जीते हैं जहां में है जिंदगी का मकसद और उनके काम आना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह उल अजीज, जिंदगी ने दिया साथ नेक्स्ट होनी है मुलाकात, और कोशिश कीजिएगा ना जिद तमाम जब भी कुर्बानी जी जरूरतमंद फ्रिज में गोश्त, बहुत से लोग जो है फ्रिज में गोश्त भरने के लिए कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी की डेफिनेशन उसकी मीनिंग समझे, ये असली हकदारों के लिए होता है। अस्मा आपका भी शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, और ये असली हकदारों के लिए कुर्बानी की जाती है, मुस्तहिक लोगों के लिए, तो कोशिश कीजिएगा इस बार ईदें कुर्बान पे आप सिर्फ और सिर्फ रब की रजा के लिए कुर्बानी कीजिए। अगर आपके अपने मिलने वाले आपके अड़ोस पड़ोस के लोग आपसे खफा हैं तो भी अना को मकदम नहीं रखिएगा, कुर्बान कर दीजिएगा वो तमाम

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN।
1: पाक चीन दोस्ती के नाकाबिले शिकस्त करार, लागापन के वधिक मजबूत बयान ते इतफाक। शी जिनपिंग चयो त चीन पाकिस्तान सां दोस्ती के घड़ी अहमियत दे थो। विचो भर में अमन के क्याम लाए पाकिस्तान जो किरदार सहारा जोगो है। वजीर आजम शहबाज शरीफ चयो त पाकिस्तान चीन के पैंजो एतमाद जोगो दोस्त समझे तो। वजीर आजम शहबाज शरीफ चीनी हम मनसब से भी मुलाकात कई। बिन्हीं मुल्क विच में मुख्तलिफ़ वायदन ए यादाश्तन से सही भी कई हुई। ईरान अमरीका सा जंग के खात्मे लाए शुरुआती फ्रेमवर्क के इतफाक थे तस्दीक कर छी। ईरानी परदेही वजारत के तर्जुमान इस्माइल बकाई है त जंग के खात्मे लाए अमरीका सा गालू जारी आहन। शुरुआती एमओयू ते पहुंचण जो मकसद ईरान ए अमरीका में मुआहदे के वेझो पहुंचण ना है। फिलहाल पाकिस्तान वफद मोकलण जो इरादो ना है। आबदा हुरमुज वारो मामलो साहिली मुल्क जो है। फ्रेमवर्क में हुरमुज बाबत घणो जिक्र ना है। एटमी मामले ते भी गालू न करे रहा हूं। ईरान सा मुआहदो मुकम्मल तौर से तय ना है थे। असो मुआहदो ओबामा वाले मुआहदे का उबतर हों। मुआहदे के अं किठो ना नई कें के नुकतन की खबर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है नाकाम मानो खराब डील नया कद। परदेही वजीर मार्को रूबियो ईरान से डील से कम हले पो सके तो ईरान से अज कें मुआहदे से पहुंची वनू। आबदा हुरमुज खोलो वन वक्त तय कर एटमी मामले से गालू कई वनन।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आहिन।
2: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-460100।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा?
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
4: आए। अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
5: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836
2: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-15-65-724।

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं ग्लो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: क्या देख रहे हो?
2: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
1: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल चौपर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई, 0307-359-2120।
5: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMB इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह, हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर।

मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301 91 896

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
3: 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
2: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

क्वेटा धमाके में शहीद थियल पंज फौजी जवानन जी सिंध के मुख्तलिफ शहर में फौजी एजाज से तदफीन। शहीद फौजी जवान अब्दुल मजीद लुंड जी दादू भरसा गोठ चाकर खान लुंड ए शहीद फौजी जवान मजीबुर रहमान लगारी की तदफीन संदस अबाणे गोठ कस्बो काछो में कई वही। फौजी अहलकार मोहब्बत अली वीराणी जिकंदकोट भरसा अबाणे गोठ बंगन कम्बराणी में जनाजे नमाज बाद सरकारी एजाज से तदफीन। शहीद हवालदार नदीम अख्तर के लकी गुलाम शाह भरसा अबाणे गोठ रुक में सरकारी एजाज से मिट्टी वाह हवाले कयो वियो। पाक फौज शहीद नादिर अली जो मढ़ सांगड़ भरसा अबाणे गोठ चक नंबर 2 में आणे फौजी एजाज से तदफीन कई वही। माण्हुनि जी वॾे अंग में शिरकत।

0: हथ बस इहो वियासीं हिते वॾेरे जी ओता खपे उते वॾेरो बि असांजो भाउ चौकीदारी कंदो अथसि वॾेरो उते वेठो हुयो टे लॻी अथसि हिते रस्ते में ई साह ॾिन
1: त पोइ वॾेरा माण्हू बादशाह आहिनि पर पोइ ईअं ई फायर थी आहे हिन खे लॻी आहे
2: टोल पुलिस वॾेरे सईद सरकीअ जे पुट हथां क़तल थियल चौकीदार जो खून लोढ़ण जे चकर में वाके खे तफ़ाक़ी करार ॾेई केस दाख़िल कंदड़ पुलिस वॾेरे जे पुट बिलावल सरगीअ खे गिरफ़्तार करण लाइ के बि कदम न खया। पुलिस केस में का बि अगभराई न थियण जी तस्दीक करे छॾी। ग़रीब पोरत जो कुटुंब बासरनि जे खून सबबि ख़ामोश थी वियो। ज़रियनि जो चवणु आहे त पुलिस बासर भोतारनि जे दॿाउ ते जवाबदार खे गिरफ़्तार करण बदिरां बचाए रही आहे। साजा वंदन पारां जवाबदार गिरफ़्तार करण जो मुतालबो।
3: सजावल में धीउ मुड़ुस सां गॾिजी पीउ खे क़तल करे छॾियो। ज़ाल मुड़ुस गिरफ़्तार। पुलिस मूजिब ॻोठ कारो माची में नाटे पंहिंजे सहुरे सावण माची खे छुरियुनि जा वार करे क़तल कयो। वाकिए में मक़तूल जी धीउ फरज़ाना जी बि शामिल हुजण जो इंकशाफ थियो आहे। जवाबदार जानी ऐं फरज़ाना खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। वधीक जांच जारी आहे।
2: घोटकी वेझो नारीअ खे मुबैना तौर अगवा बाद इज्तमाही लजालत जो निशानो बणाइण वारे केस जी ॿुधणी नारी अदालत में पेश। नारीअ जो 164 वारो बयान रिकॉर्ड कराइण लाइ 1 जून जी तारीख़ मुक़रर। नारी चयो आहे त कंहिं बि जवाबदार सां लागापा न हुआ। मूं ते कूड़ा इल्ज़ाम लॻाया पिया वञनि। सोशल मीडिया ते फेक वॉइसिस रखियूं पई वञनि।

0: चक भरसा औरत जी का ना इल्जाम है ठे कत्ल।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
2: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003।

में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद आई मा एस डीलर सेल कमरकल रेट पाए सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड एरिया

की तमाम एडजस्टमेंट जी एडजस्ट ट्राई जरिए कई बने थी जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर आशिक होंडा मोटर बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आरई 03073592।

0: मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मिरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार अहिड़ो कामयाब।
1: मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
2: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
0: ऑफिस जी मिरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मिरापुर। राबते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8743।
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-3385-69।

0: जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

ईरान अमरीका सां जंग जे ख़ात्मे लाइ शुरूआती फ्रेमवर्क ते इतफ़ाक़ थियण जी तसदीक करे छॾी। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त जंग जे ख़ात्मे लाइ अमरीका सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। शुरूआती एमओयू ते पहुचण जो मक़सदु ईरान ऐं अमरीका में मुआहिदे जे वेझो पहुचण नाहे। फ़िलहाल पाकिस्तान वफ़द मोकिलण जो इरादो नाहे। अबनाए हुर्मुज़ वारो मामिलो साहिली मुल्कनि जो आहे। फ्रेमवर्क में हुर्मुज़ बाबति घणो ज़िक्र नाहे। एटमी मामले ते बि ॻाल्हियूं न करे रहिया आहियूं। सिंध असेंबली में अपोजिशन जो कराची में पाणी कोट खिलाफ़ एहतजाज। अपोजिशन मेंबर्स स्पीकर डाइस जो घेराव करे एजेंडा जूं कापियूं फाड़े छॾियूं। अपोजिशन एमपीएस ऐं सूबाई वज़ीरनि विच में सख़्त जुमिलनि जी ॾे वठि। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी चयो आहे त पाणी जो मसइलो अहम आहे। पहिरियां उन ते ॻाल्हायो, मूंखे ॻाल्हाइण जी इजाज़त न मिली त कंहिंखे बि ॻाल्हाइण न ॾींदुसि। घरू वज़ीर ज़ियाउल हसन अंजार चयो त अवां पाणीअ ते सियासत न कयो, महमली वारी रिथाणियो, पोए पाणीअ जे मसइले ते ॻाल्हाईंदासीं।

0: क्वेटा धमाके में शहीद थियल पंज फौजी जवानन जी सिंध के मुख्तलिफ शहरनि में फौजी एजाज सां तदफीन। शहीद फौजी जवान अब्दुल मजीद लुंड जे दादू भरसा घोट चाकर खान लुंड ए शहीद फौजी जवान मुजीबुर रहमान लगारी की तदफीन संदस अबाणे घोट कस्बो काछो में कई वही। फौजी एहलकार मोहम्मद अली मीराणी की कद कोट भरसा अबाणे घोट बगन कमराणी में जनाजे नमाज बाद सरकारी एजाज सां तदफीन। शहीद हवलदार नदीम अख्तर के लकी गुलाम शाह भरसा अबाणे घोट में सरकारी एजाज सां मिट्टी बाव हवाले कयो। पाक फौज के शहीद नादिर अली जो मड़ सांगड़ भरसा अबाणे घोट चक नंबर ब में आणे फौजी एजाज सां तदफीन कई वही। माण्हुनि जी वॾे अंग में शिरकत।
1: रात बस इहो वियासीं हिते वॾेरे जी ओताक ते, हुते वॾेरो बि असांजो भाउ चौकीदारी कंदो अथसि। वॾेरो हुते वेठो हुयो,
2: घणी गोली लॻी तव्हां
1: टे लॻी अथसि हिते रस्ते में साहु ॾिन
3: त पोइ वॾेरा माण्हू बादशाह आहिनि पर पोइ ईअं ई फायर थी आहे, ईअं ई लॻी
2: आहे। हेठि पिस्टल साफ़ थींदो आहे कॾहिं तव्हां
3: बस बीठो न अमीराणो ॿार हो, पोइ हाणे कंहिंखे छा ख़बर
1: आहे। केस दाख़िल अचानक हादसो थी रहियो आहे, दलाल खान ते कराईंदा।
0: टुल पुलिस वॾेरे सईद सरकी जे पुट हथां क़तल थियल चौकीदार जो खून लोड़ण जे चकर में वाक़िए खे इतफ़ाक़ी करार ॾेई केस दाख़िल कंदड़ पुलिस वॾेरे जे पुट बिलावल सरकी खे गिरफ़्तार करण लाइ के बि क़दम न खयां। पुलिस केस में का बि अगबराई न थियण जी तस्दीक करे छॾी। ग़रीब पोरीअ जो कुटुंब बासरनि जे ख़ौफ़ सबबि ख़ामोश थी वियो। सजन जो चवणु आहे त पुलिस बासर भोतारनि जे दॿाउ ते जवाबदार खे गिरफ़्तार करण जे बदिरां बचाए रही आहे। साजा वंदन पारां जवाबदार गिरफ़्तार करण जो मुतालबो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मेरा आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई।
1: हाँ नहीं अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
2: रब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003।

मुख़्तलिफ़ ऐं कालम में मौजूदु आहिनि। फ़ौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौक़ीर अहमद 0306-16

ॿारनि ऐं नुंहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-3385-69।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तियाब आई।
2: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03201800003।
5: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट आई फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर आई सूमर

पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301 91 896

0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94।

0: ईरान अमेरिका सां जंग जी खात्मे लाइ शुरूआती फ्रेम वर्क ते इतफ़ाक़ थियण जी तस्दीक करे छॾी। ईरानी परॾेही वज़ार जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त जंग जी खात्मे लाइ अमेरिका सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। शुरूआती MOU ते पहुचण जो मक़सदु ईरान ऐं अमेरिका में मुआहिदे जे वेझो पहुचण नाहे। फ़िलहाल पाकिस्तान वफ़द मोकिलण जो इरादो नाहे। आमनाए हुरमज़ वारो मामिलो साहेली मुल्कनि जो आहे। फ्रेम वर्क में हुरमज़ बाबति घणो ज़िक्र नाहे। एटमी मामले ते बि ॻाल्हियूं न करे रहिया आहियूं।
1: सिंध असेंबली में अपोजिशन जो कराची में पाणी खोट खिलाफ़ एहतजाज। अपोजिशन मेंबर्स स्पीकर डाइस जो घेराव करे एजेंडा जूं कापियूं फाड़े छॾियूं। अपोजिशन MPs ऐं सूबाई वज़ीरनि विच में सख़्त जुमलनि जी ॾे वठि। अपोजिशन लीडर अली ख़ुर्शीदी चयो आहे त पाणीअ जो मसइलो अहम आहे, पहिरियां उन ते ॻाल्हायो। मूंखे ॻाल्हाइण जी इजाज़त न मिली त कंहिंखे बि ॻाल्हाइण न ॾींदुसि। करू वज़ीर ज़ाल सलंजार चयो त उहा पाणीअ ते सियासत न कयो, महमली वारी रिथ आणियो, पोइ पाणीअ जे मसइले ते ॻाल्हाईंदासीं।

सिंध में पाणी खोड़ शिद्दत अख़्तियार करे वही। मुख़्तलिफ़ शहरनि में आबादगारनि जा मुज़ाहिरा ऐं धरना। ठिकराटो भरिसां बंबली माइनर जी पुछड़ी जे आबादगारनि पाणी खोड़ ख़िलाफ़ धरणो हयो। भान सईदाबाद में बि भान माइनर लुंडी शाख जी पुछड़ी जे आबादगारनि पाणी जी खोड़ ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो करे धरणो हयो। कुंडरी जे थरटेल वाह जा आबादगारनि पाणी खोड़ ख़िलाफ़ रस्तनि ते निकिरी आया। सुबुह देरो में दराज़ा माइनर, ताज माइनर, इमाम शाख, सोभा शाख, सेठा जा माइनर, गरखड़ो वाह, मेहराब वाह में पाणी जे खोड़ ख़िलाफ़ एहतजाज।

0: क्वेटा धमाके में शहीद थियल पंज फौजी जवाननि जी सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में फौजी एज़ाज़ सां तदफ़ीन। शहीद फौजी जवान अब्दुल मजीद लुंड जे दादू भरसां ॻोठु चाकर ख़ान लुंड ऐं शहीद फौजी जवान मुजीबुर रहमान लगारी जी तदफ़ीन सदस अबाणे ॻोठु कस्बो काछो में कई वई। फौजी अहलकार मोहबत अली वीराणी जी कंदकोट भरसां अबाणे ॻोठु बगन कंबराणी में जनाज़े नमाज़ बाद सरकारी एज़ाज़ सां तदफ़ीन। शहीद हवालदार नदीम अख़्तर खे लकी ग़ुलाम शाह भरसां अबाणे ॻोठु में सरकारी एज़ाज़ सां मिटी मां हवाले कयो वियो। पाक फौज जे शहीद नादिर अली जो मढ़ सागर भरसां अबाणे ॻोठु चक नंबर ॿ में आणे फौजी एज़ाज़ सां तदफ़ीन कई वई। माण्हुनि जी वॾी अंगशत जी शिरकत।
1: राति बस इहो वियासीं हिते वॾेरे जी ओताक ते, उते वॾेरो बि असांजो भाउ चौकीदारी कंदो अथसि। वॾेरो हुते वेठो हुयो, टे लॻी अथसि हिते रस्ते में साहु ॾिनई
2: त पोइ वॾेरा माण्हू बादशाह आहिनि, पर पोइ इन ई ख़ैर थी आहे, इन खे लॻी
3: आहे। पिस्टल साफ़ थींदो आहे कॾहिं तव्हां
2: बीठो न अमीराणो ॿार हो, पोइ हाणे कंहिंखे छा ख़बर
1: आहे। केस दाख़िल।
4: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, आई बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ते जिला आसिम हुसैन आराई, 0307-359-2120।
6: खुशखबरी खुशखबरी, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3583-569-0300-3855-69।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320180003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियर दस्तयाब आई
2: हाँ ये चो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 आई 0242-460100।

पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301 91 896

0: sensitivity.
1: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
2: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9 लगी 55 मिनटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते। अवां जी स्किन डल एं बेरोनक लगे थी हाने पहिजी स्किन के दियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट एं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर दी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट

0: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज जीए एफएम 94।
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: ईरान अमेरिका सां जंग जे खात्मे लाइ शुरूआती फ्रेमवर्क ते तफ़ाक़ थियण जी तस्दीक करे छॾी। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त जंग जे खात्मे लाइ अमेरिका सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। शुरूआती MOU ते पहुचण जो मक़सदु ईरान ऐं अमरीका में वाइदे जे वेझो पहुचण नाहे। फ़िलहाल पाकिस्तान वफ़द मोकिलण जो इरादो नाहे। आपटाए हुर्मुस वारो मामिलो साहिली मुल्कनि जो आहे। फ्रेमवर्क में हुर्मुस बाबति घणो ज़िक्र नाहे। एटमी मामले ते बि ॻाल्हियूं न करे रहिया आहियूं। सिंध असेंबली में अपोजिशन जो कराची में पाणी कोट खिलाफ़ एहतजाज। अपोजिशन मेंबर्स स्पीकर डाइस जो घेराव करे एजेंडा जूं कापियूं फाड़े छॾियूं। अपोजिशन MPS ऐं सूबाई वज़ीरनि विच में सख़्त जुमिलनि जी ॾे वठ।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।